ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आज सोमवार है, शक संबंध 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 5:57 होने जा रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात।

0: इस कार्यक्रम में अरहर की वैज्ञानिक खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम अरहर की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अरहर की सफल खेती के लिए बलुई दोमट व दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर खेत हल्का ढालू है तो ज़्यादा अच्छा है, इससे खेत में पानी नहीं रुकता। यदि खेत में पानी लगता है तो उसके निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। खेत का चुनाव कर लेने के बाद फिर उसकी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। जब खेत जोतने लायक हो जाए, यानी खेत में नमी उपलब्ध हो, तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके, दो तीन जुताइयां देसी हल से करके पाटा लगाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद कार्य शुरू होता है बुआई का। बुआई कूड़ों में उर्वरक के बाद करनी चाहिए, ताकि कूड़ में पहले उर्वरक पड़े, फिर उस पर थोड़ा मिट्टी आ जाए और फिर उस पर बीज पड़े। इस तरह की बुआई से अंकुरण के बाद पौधों की जड़ें उर्वरक के सीधे संपर्क में आ जाती हैं और पौधा अच्छी बढ़वार करता है। अब हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि उर्वरक की कितनी मात्रा प्रयोग करनी है। चूंकि अरहर एक दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ें खुद नत्रजन बना लेती हैं, इसके कारण इसे कम मात्रा में नत्रजन देना पड़ता है। हाँ, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता जरूर अधिक होती है, यानी इस फसल को कुल 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में एक हेक्टेयर खेत के लिए आवश्यकता होती है। इस मात्रा को आप डाई अमोनियम फास्फेट के द्वारा भी दे सकते हैं तथा यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा भी, किंतु अच्छा होगा कि फास्फोरस हेतु सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। इससे ये अतिरिक्त फायदा होगा कि वह सुपर फास्फेट के प्रयोग करने पर 12% सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है, जो कि पौधे की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। अतः एक हेक्टेयर खेत के लिए 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय कूड़ में देना चाहिए। ये तो रही उर्वरक की मात्रा, और अब बीज की बात। अरहर की दो तरह की प्रजातियाँ हैं, एक तो अगेती और दूसरी देर से पकने वाली प्रजातियाँ। अगेती प्रजातियों में टाइप 21, उपास 120, मानक और पारस प्रमुख हैं। देर से पकने वाली किस्मों में टाइप 7, टाइप 17, बहार, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय विकास और मालवीय चमत्कार, ये सब इसकी उन्नत प्रजातियां हैं। इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। टाइप 21 के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस प्रजाति हेतु लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। उपास 120 का प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम बीज लगता है। इसके लिए कूण से कूण की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नरेंद्र अरहर 1, मालवीय विकास, मालवीय चमत्कार जो देर से प्रजातियां हैं, इनका 25 से 30 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रहे, बोने से पहले बीज को शोधित अवश्य किया जाए। इसके लिए थियम दवा लेते हैं, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त होती है। थियम दवा से बीज शोधन के बाद उसे विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित अवश्य करें। कल्चर का 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अरहर की खेती करनी चाहिए।
0: अरहर के वैज्ञानिक खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: 1, 2, 3, चेक।
1: दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। डीडी फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, डीडी फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और

0: मनोरंजन से भरपूर डीडी फ्री डिश का नया अवतार यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मेरा शिव ही मेरा संसार है, तांडव जिसकी लीला है, त्रिनेत्र जिसकी शान, वही है भोलेनाथ। जीवन की हर राह आसान हो जाती है जब दिल से महादेव की आराधना होती है। जो लोग महादेव की शरण में होते हैं उनके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां होती हैं।

जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ।

सत्य धर्म और मर्यादा की पहचान है भगवान राम। लोगों के दिल में बसते हैं राम। जो लोग भगवान राम का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं, उनके पास सुख और समृद्धि हमेशा रहती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। गायक कलाकार थे अनुराधा पौंडवाल, हरिओम शरण और ओम व्यास। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: गोस्वामी तुलसीदास का ये कथन सत्य है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस भौतिक जगत में कर्म की महती महिमा है, क्योंकि कर्म के द्वारा कुछ भी असाध्य अथवा अप्राप्य नहीं है। ईश्वर की असीम कृपा है कि उसने मानव को सकल समृद्धि सिद्धियों का भंडार प्रदान किया, साथ ही उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म विधान का उपदेश भी दिया, जिसको करके मनुष्य इन्हें प्राप्त कर सके। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु किया गया कार्य या कर्म सामान्य कर्म के रूप में ही माना जाता है, जबकि अभौतिक शक्ति की प्राप्ति हेतु की गई या किया गया साधन या उपासना के रूप में जानी जाती है। दैवी जीवन से एकात्म स्थापित करके ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त हो सकता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये दैवी जीवन दान द्वारा अस्तित्व में आता है, ग्रहण द्वारा नहीं। अकर्मण्यता दैवी जीवन से सर्वथा पृथक है। अकर्मण्यता मनुष्य को अपने और दूसरों के लिए भी व्यर्थ और निरर्थक कर देती है। इसी कारण मनुष्यों ने कहा है कि जो महत्वाकांक्षी है उन्हीं के समान मनुष्य सतत क्रियाशील बना रहे। जीवन की कामना नष्ट कर डालने पर भी जीवन का सम्मान करने की आज्ञा भी उन्हीं से मिली, क्योंकि मानव जीवन ईश्वर की सर्वोत्तम धरोहर है। इसी कारण सुख की कामना नष्ट कर डालने पर भी सदा प्रसन्न बने रहने की आज्ञा प्रदान की गई। इतना ही नहीं अपितु अपनी पूर्ण आयु को भोगने की आज्ञा या इच्छा कर्म को करते हुए ही करनी चाहिए। कुर्वन्ने ही कर्माणि जिजविषेच्छातंग समाह। अज्ञानतावशात मनुष्य जड़ पदार्थों की सीमित सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन खो देता है, किंतु असीम शक्ति संपन्न चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए कभी सचेष्ट नहीं दिखाई देता। जबकि सतत साधना भी क्रिया द्वारा मानव विचारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने में पूर्ण रूपेण सर्वथा स्वतंत्र है और सतत लगन के साथ इन्हें प्राप्त कर आत्म तत्व में लीन हो जाता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने वाले प्राणियों को इंद्रिय परायण जीवन जीते देखा जाता है। इतना ही नहीं वरन साधारण सी अनुकूलता से ही प्रसन्न और प्रतिकूलता से अप्रसन्न पीड़ित, हतोत्साहित और दुखी होते देखा जाता है। दूसरी ओर असामान्य जीवन जीने वाले ऐसे भी अनेक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो भौतिक संपन्नता और आत्मिक विभूतियों से संपन्न पाए जाते हैं। इस प्रकार सामान्य जीवन जीने वालों और विभूतिवंतों के मध्य पृथकों और आकाश सा अंतर देखा जाता है। गीता में कर्म विषयक बताई गई स्थिति और भी महत्वपूर्ण है। वहां स्पष्ट लक्षित होता है कि अनात्मा की व्यर्थता का अनुभव होने से जीव आत्मा की पुकार को सुनकर लोक संग्रह के लिए कर्म करने को प्रस्तुत हो जाता है। दूसरों के हितार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। अंततः गत्वा यह उच्चाकांक्षा भी शनै शनै नष्ट हो जाती है और साधक केवल ईश्वर इच्छा की पूर्ति का साधन बन जाता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के समान प्रत्येक मनुष्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि ऐसी स्थिति में अकर्मण्यता नहीं आती, प्रत्युत कर्मरता ही बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में सर्वथा निराश, हतोत्साहित, युद्ध से विरत अर्जुन को स्वकर्तव्य के प्रति सचेत करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं ही सावधान होकर कर्म ना करूं तो मनुष्य मेरा अनुसरण करके अकर्मण्य हो जाएंगे और सब लोग नष्ट हो जाएंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में विटामिन की कमी से होने वाली समस्याएं विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह।
1: मैं डॉक्टर वीबी सिंह, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी। इस तरह से मैंने आपको विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में बताया। तो ये विटामिन जो है ना, हर एक शरीर में इसकी ज़रूरत जो है हम अपने कॉमन सोर्सेज से कर सकते हैं, हरी साग सब्जियों से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, और जो लोग नॉन वेज लेते हैं, अंडे हैं, मीट है, इन सबसे विटामिन की कमी को हम लोग शरीर में पूरा कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर मान लीजिए कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, क्योंकि कई ऐसे विटामिन डिफिशेंसी है जिससे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया कि पिलिग्रा है, निकोटीन की कमी से हो गया, और आपका जो स्कर्वी है, गम ब्लीड कर रहा है, हड्डियां कमजोर रही है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, इन सब के लिए तो अलग से सप्लीमेंट देते हैं जो चिकित्सक अपने अनुसार से डिसाइड करता है। विटामिन ई की कमी से मैंने बताया कि एबॉर्शनिक गर्भपात हो सकता है, तो या विटामिन के की कमी से शरीर में ब्लड निकलने लगता है। तो इस विटामिन की कमी को हम अपने सामान्य स्रोत से भी पूरा कर सकते हैं, और सामान्य स्रोत से अगर किसी कारणवश हम नहीं पूरा कर पाए और मरीजों में इस तरह के सिम्टम आने लगे, बीमारी के सिम्टम आने लगे, तो चिकित्सक से दिखा करके, जांच करा करके उस विटामिन के हम पूरा करें। देखिए, हम लोग गांव में देखते हो कि कई लोग ऐसे होते थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनको रतौधी की बीमारी हो जाती है। रतौधी मतलब ये हो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में उनको दिखता नहीं। इसका मुख्य कारण जो है विटामिन ए की डिफिशेंसी, जो कि मैंने बताया कि कॉमन सोर्स है, दूध है, आपका गाजर, गाजर तो हर जगह मिल जाता है, हरी सब्जियां हैं, फिश है, ड्राइड एप्रिकॉट्स है, इन सब की कमी से विटामिन ए को पूरा किया जा सकता है। तो मैंने अभी विस्तृत रूप से विटामिन के बारे में आप सबको बताया, और हम समझते हैं कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और जो विटामिन की कमियां हैं, पहले तो आदमी शुरू से ही, बचपना से ही, अगर उसके परिवार के लोग, उसके माँ बाप जागरूक हैं, तो उस विटामिन की कमी को अपने सामान्य, अपने घरेलू सब्जियों से, घरेलू फलों से, घरेलू अपने अन्न से इसको पूरा कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर विटामिन की कमी शरीर में होती है, तो उसके लिए अलग से जब बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिनको दवा देना पड़ता है, किसी खून की कमी हो गई, किसी आदमी को बेरी बेरी हो गया, हार्ट और आपकी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो है विटामिन की सप्लीमेंट चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिए। विटामिन B3 है, नायासीन है, जिसकी कमी से पिलिग्रा जैसे गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसमें डायरिया होने लगता है, शरीर में जो है चमड़े में खराबी होने लगती है, मस्तिष्क में काफ़ी कमी हो जाती है, तो उसमें कभी कभी कहते हैं कि एक स्टेज आती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। विटामिन की कमी से डेथ हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से B12 कमी से जो है परनीशियस एनीमिया हो जाती है, जिसके नाते खून की काफ़ी कमी हो जाती है, तो उसको भी, वो भी गंभीर चीज़ें हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और गम ब्लीडिंग होने लगती है, डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर तक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार को जागरूक रहना चाहिए कि विटामिन की कमी को हम अपने स्रोत से पूरा करें, और घर में इस तरह के सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सब लोग अच्छी तरीके से इसको लें। तो ये सब विस्तृत रूप से मैंने विटामिन के बारे में सबको बता दिया। धन्यवाद।
0: विटामिन की कमी से होने वाली समस्याएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

श्रोताओं, आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आज हम आपको सुनवाएंगे निर्मल सैनी का गिटार वादन रात्रि 10:30 पर और सुबह 7:31 पर, और डॉक्टर बी बालाजी का वायलिन वादन आप सुनेंगे दोपहर 12:45 पर। कवि गोष्ठी का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00। प्रतिभागी होंगे मधुलिका राय, अबरार हसन, तरुण पांडे और यूनुस अंसारी। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा अंजुमन रात्रि 9:30 पर।

सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे इसकी 8वीं कड़ी रात्रि 8:10 पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। वाचर्स वर आशुतोष शास्त्री और सना सलीम का, प्रस्तुति अशोक कुमार पांडे की। वक्त होगा 7:31 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चित्रा सिंह की आवाज में गजल, रात 8 बजे और दोपहर 12:30 पर महुआ बैनर्जी के स्वर में गीत। शाम 7 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य कार्यक्रमों के अलावा किसान भाई सुनेंगे पीलिया रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर विवेक राय से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। अलावा इसके राम जियावन और साथियों के स्वर में लोकगीत भी होगा। इन्हीं के गाए हुए लोक संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दोपहर 1:45 पर भी। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:15 पर। अन्य कार्यक्रमों के अलावा आदित्य प्रकाश की वार्ता होगी। विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय माध्यम। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गाने आप सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में। वक्त होगा दोपहर 2:30 पर।

महिलाओं का कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी दिन 1:15 पर। अन्य कार्यक्रमों के अलावा बहनें सुनेंगी डॉक्टर असीम मिश्रा से बातचीत, विषय होगा कैंसर रोग समय पर पहचान क्यों जरूरी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे से। श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा आपके पत्र आपके गीत दिन 11 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। सुबह 8:45 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मधुरी माँ। और अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7 बजे से आप सुनेंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: छाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
1: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: सियाप्पा
0: आ गई है बनारसी कुड़ी, सो बनारस लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
3: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और चकाचक हैं। और चकाचक होना बनता भी है, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बहुत खास है और आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल और जबरदस्त होने वाला है। और आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ हैं
4: बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू।
5: जी हाँ, आपका अपना बनारसी बाबू, तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी है
3: दोस्तों, ये शब्द हर सुबह घरों की खामोशी में जीवन घोल देते हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल ध्वनि और समाचारों का भरोसा आज भी करोड़ों भारतीयों की स्मृतियों में गूंजते हैं।
5: बनारस, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज आकाशवाणी ने पूरे कर लिए हैं अपने 90

0: आशुतोष जी
1: जी सना जी,
0: जब घरों में टेलीविजन की चमक नहीं पहुंची थी, जब मोबाइल की घंटियां जीवन का हिस्सा नहीं बनी थी, तब एक वाक्य, एक मधुर ध्वनि हर सुबह भारत की चेतना को जागृत करती रही। ये आकाशवाणी है। इस उद्घोषणा के साथ ही आज भी करोड़ों भारतीयों के दिन की शुरुआत होती है।
1: सना जी, किसी के लिए ये शब्द समाचारों की विश्वसनीय धड़कन है, किसी के लिए संगीत साधना, किसी के लिए मार्गदर्शक और किसी के लिए दूर बैठे अपने देश की आत्मीय पुकार। भारत की स्मृतियों में अगर किसी धुन ने अपनी स्थायी पहचान बनाई तो वह थी आकाशवाणी की राग शिवरंजनी में निर्मित संकेत धुन और सदी हुई उद्घोषणा।
0: वर्ष 1895 में वैज्ञानिक गुग्लियेल्मो मार्कोनी के रेडियो के आविष्कार के लगभग 3 दशक बाद हमारे देश में प्रसारण का सिलसिला शुरू हुआ।
1: वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा बम्बई और कलकत्ता में प्रसारण आरंभ किया गया, लेकिन उसके बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये सेवा बंद हो गई।
0: फिर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की। फिर आया 8 जून 1936 जब इसे नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। बाद में महान साहित्यकार पंडित रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बड़ा सार्थक और अभूतपूर्व नाम दिया, आकाशवाणी, यानी आकाश से आने वाली ध्वनि।
1: ये एक नया युग था जब शब्दों को पंख मिले तो वे आकाश को चीरते हुए हर दिल तक उतरने लगे। पिछली शताब्दी में ही देश के 90% भूभाग तक आकाशवाणी की पहुंच हो गई थी और ये वो मंच बन गई जहां गांव की चौपाल से लेकर कस्बों और नगरों तक उसने सम्मानजनक और विश्वास से भरी जगह बना ली थी।
0: बनारस, आपको पता है, एक बार भगवान बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा कि संसार की सेवा किस तरह की जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुतों के हित और सुख के लिए विचरण करो। भगवान बुद्ध की इसी शिक्षा को आकाशवाणी ने जन जन की सेवा और हित में पूरी शक्ति से अपनाया
1: और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बन गया आकाशवाणी का ध्येय वाक्य। इन 90 वर्षों में तकनीकें बदली, यंत्र बदले, वातावरण बदला, पर आकाशवाणी की सार्थकता, सहजता और मिठास सतत बनी रही। इसके कार्यक्रमों ने हर समय देश को संबल दिया और सशक्त बनाया।
0: आजादी

0: के आंदोलन में जब आवाज और जज्बात पर पहरा था, तब भी आकाशवाणी ने जनमानस का हौसला बढ़ाया। आजादी के बाद तो आकाशवाणी सचमुच जन जन की वाणी बन गई। इसका योगदान केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, इसने साहित्य संस्कृति की विरासत को भी संवारा।
1: आकाशवाणी के प्रसारण में विविधता हमेशा रही, जिसके कारण हर वर्ग इसे सुनना पसंद करता है, और इसी कारण रेडियो की महत्ता इतनी बढ़ गई कि वो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि घर का सदस्य बन गया।
0: उन दिनों फिल्मी दुनिया के बाद ग्लैमर का सबसे बड़ा केंद्र आकाशवाणी ही थी। उद्घोषकों की आवाजें फिल्मी कलाकारों की तरह पहचानी जाने लगी और श्रोता भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और उनकी गंभीरता को समझते थे। उन्हीं दिनों एक ऐसी आवाज जिसने आकाशवाणी वाराणसी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, कई सारे नाटक झलकी धारावाहिक प्रोड्यूस किए और अपनी जबरदस्त आवाज से सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं कि 90 साल पूरे होने पर वो हमसे क्या कह रहे हैं।
2: आवाजों का ये आंगन कल भी गुलजार था, आज भी रोशन है, महक रहा है कल के जैसा। आवाज के गलियारे में रेडियो ने कोरे कैनवास पर शब्दों के चित्र बनाते बनाते 90 वर्ष का सुनहरा सफर तय कर लिया है, जिसे देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। हम लोगों ने भी इस 90 साल के सफर में 1980 से लेकर 2015 तक अपना थोड़ा सा योगदान देने का प्रयास किया था। सफल हुआ नहीं हुआ ये तो श्रोता ही बता सकते हैं, पर ध्येय सिर्फ एक ही था, रेडियो दिल से। आशा करता हूँ कि आवाज के इस गलियारे के नए साथी दिल से प्रोग्राम तैयार करते रहेंगे, वो सीधे श्रोताओं के दिल में उतर सके। आप सभी को 90 वर्ष के सुनहरे सफर में जुड़े रहने के लिए हृदय से आभार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाराणसी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक किशोर कुमार को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सना
0: जी,
1: जब 90 वर्षों पर शुभकामना संदेश का एक सिलसिला है, तो हमारे आकाशवाणी वाराणसी के वर्तमान कार्यक्रम प्रमुख और सहायक निदेशक श्री अशोक पांडेय जी का शुभकामना संदेश भी हम इसी हाथ सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल,
3: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज का दिन इस मायने में भी विशेष है कि आकाशवाणी अपनी गौरवपूर्ण यात्रा के 90 वर्ष पूरी कर रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। श्रोताओं, 90 वर्षों की यह यात्रा केवल एक प्रसारण संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों श्रोताओं के साथ बने हुए विश्वास, अपनत्व और संवाद की भी यात्रा है। पीढ़ियां बदलती रहीं, समय बदलता रहा, तकनीक बदलती रही, लेकिन आकाशवाणी और उसके श्रोताओं के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहा। कभी सुबह की आराधना, कभी समाचार, कभी संगीत, कभी किसानों और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, तो कभी साहित्य, संस्कृति और लोक परंपराओं की सुगंध। आकाशवाणी ने जीवन के हर रंग को अपनी आवाज दी है। आज जब हम इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं, तो सबसे पहले अपने श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपका स्नेह, आपका विश्वास और आपकी निरंतर सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप सुनते रहे, सुझाव देते रहे और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देते रहे, इसी कारण आकाशवाणी आज भी देश का सबसे विश्वसनीय और आत्मीय प्रसारण माध्यम बनी हुई है। समय के साथ हम नई तकनीकों और नए मंचों पर भी अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहे हैं, ताकि आकाशवाणी की आवाज हर पीढ़ी तक, हर स्थान तक और पहले से अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। लेकिन हमारी मूल भावना वही है, जनसेवा, विश्वसनीय सूचना और सार्थक मनोरंजन। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का यह सबसे सशक्त माध्यम था, है और लगातार बना रहेगा। आकाशवाणी के 9 दशकों की इस अभूतपूर्व यात्रा के इस उत्सव में हम आपके साथ अपने इस विशेष संबंध का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हम आपकी अपेक्षाओं पर इसी तरह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद अशोक पांडे सर हमसे जुड़ने के लिए। बनारस वर्ष 1975-76 में तत्कालीन सरकार ने जनहित में ये निर्णय लिया कि रेडियो स्टेशन केवल बड़े नगरों की शोभा नहीं होने चाहिए। तब पिछड़े और आदिवासी अंचलों में भी अनेक आकाशवाणी केंद्र आरंभ किए गए। अत्यंत दुर्गम आदिवासी क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में भी आकाशवाणी के क्रमशः जगदलपुर और अंबिकापुर केंद्र शुरू हुए।
1: आज आकाशवाणी के 591 केंद्र और अनेक चैनल्स हैं। और देखिए ना, हमारा ये आकाशवाणी वाराणसी भी नित नए प्रयोग करता रहा और बेशुमार प्यार भी बटोरता रहा। और विगत 19 जून 2022 से शुरू हुआ हमारा गुड मॉर्निंग बनारस का ये सफर अपने 4 साल पूरे करने जा रहा है।
0: और इसी सफर ने सना को आरजे सना बनाया
1: और आशुतोष को आरजे आशुतोष।
0: जी हाँ सना जी, और ये हमारे श्रोताओं का प्यार है, उनका स्नेह है, और ये भी श्रोताओं एक नए युग का शुरुआत था, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार आकाशवाणी पर एफएम स्टाइल प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई और इसको आप लोगों ने खूब सराहा, आप सबका खूब सारा प्यार मिला और उसने हमारा मार्गदर्शन भी किया और उत्साहवर्धन भी किया। इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं
1: और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग यूं ही मिलता रहेगा।
0: और जैसा कि सना अभी आपने बताया कि बहुत सारे चैनल्स आकाशवाणी के चल रहे हैं, जिनमें कि एफएम रेनबो है, एफएम गोल्ड है, उसके अलावा प्राइमरी चैनल और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती तो आप सुनते ही हैं, उसके अलावा आकाशवाणी मैत्री और रागम और एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन के साथ ही साथ आज आप डीटीएच पर भी यानी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर भी आकाशवाणी के प्रोग्राम सुन पा रहे हैं। और अब तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है, आकाशवाणी रेडियो से निकल करके आपके मोबाइल में और मोबाइल से निकल करके ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और आज आपको ये बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है, गर्व का अनुभव हो रहा है कि आकाशवाणी बदलते समय के साथ लगातार बदलती रही है और कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती रही है।
1: तभी तो हमें सुनने के साथ साथ हमारे श्रोता आज हमें देख भी पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और पत्रोत्तर कार्यक्रम में अब पत्र की जगह हमें मेल भेज पा रहे हैं, तो हम अपने श्रोता से ये भी कहेंगे कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें जरूर लिखिएगा हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com पर।
0: और इसके साथ ही सना एक और चीज हम बता दें अपने श्रोताओं को जो गर्व का विषय है कि पिछले दिनों प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया था और बहुत कम समय में आज करोड़ों लोग वेब्स को देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत तरह के प्रोग्राम्स जो कि आकाशवाणी के बहुत पुराने प्रोग्राम्स हैं, दूरदर्शन के पुराने नाटक हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, गाने हैं, इनको आप फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं।
1: और आशुतोष जी,
0: जी
1: आकाशवाणी आज गर्व से कह सकती है कि ये भारत माता का सबसे सुंदर और कीमती गहना है।
0: वाह।
1: जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, शौर्य और देशभक्ति के अनमोल रत्न गूंथे गए हैं। ये वो गहना है जिस पर हम सब गर्व करते हैं। तभी तो कहा गया है, आकाशवाणी है वो गहना, जिसने सुना उसने पहना।
0: क्या बात है सना जी, बड़ा शायराना आपने अंदाज अपनाया है। और इसी क्रम में अपने श्रोताओं को एक जानकारी भी दे दें कि आज शाम 7:31 पर आप एक विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, आकाशवाणी 90 साल बेमिसाल।
1: और किसके साथ? आशुतोष जी
0: और सना सलीम के साथ।
1: बिल्कुल।
0: चैनल होगा आपका अपना प्राइमरी चैनल, समय होगा 7:31 आज की शाम।
1: और देखिए समय की आप बात कर रहे हैं और देखते ही देखते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। बातें बहुत सारी हैं जो हम अपने स्पेशल वाले प्रोग्राम में श्रोताओं से करेंगे
0: और आपको बहुत सारी पुरानी आवाजें भी उस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगी। अब कौन सी है वो आवाजें और क्या है प्रोग्राम, ये तो आपको गेस करना होगा। और हम मिलेंगे शाम 7:31 पर।
1: और आशुतोष जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि अगर किन्हीं कारणों से वो अभी का ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम या आने वाला 7:31 पे जो आज का स्पेशल प्रोग्राम है अगर वो मिस कर देते हैं तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे फेसबुक पेज पे आप

0: को बाद में भी सुन सकते हैं और वहाँ भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सना, ये भी एक उपलब्धि है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक समय था जब रेडियो पे प्रोग्राम्स एक बार मिस हो जाते थे तो फिर वे पछताना पड़ता था कि कार्यक्रम चला गया, लेकिन आज आप हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज के माध्यम से उन कार्यक्रमों को दोबारा भी और चाहे जितनी बार सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो यह भी तकनीक की ही देन है।
0: और अब आशुतोष जी, समय हो गया है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। तो अब मुझे और आशुतोष जी को दीजिए इजाजत।
1: और इजाजत लेने के पहले एक बार फिर आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की ढेर सारी
0: शुभकामनाएं।

गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की, कहा रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित, कहा केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए यह दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा

0: की डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
1: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और

कक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक दो पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गिटार वादन। कलाकार है निर्मल सैनी, राग है नट भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे निर्मल सैनी का गिटार पर बजाया राग नट भैरव। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: pmsuryaghar.gov.in.
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला

0: स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशवी नाहर, आकाशवाणी, कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्ति

0: करण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा

0: स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द है, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी। इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के नफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ्फुज फराहम होगा, जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: NTA की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीके कार के तहत करवाया जाएगा। NTA ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाक़ है। NTA ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलान के बारे में मालूम उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG इम्तिहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को NTA की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल CBI में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम

0: कर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी तेज जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों के बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ्फुज के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगनियो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकतदारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगनियो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नितिन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंग बंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की।

0: थी जिसने इतवार को बैरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के शहर से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बैरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मज़ाहमत की एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहिदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर्व ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मरतबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलवियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीन नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरी माँ।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542221

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा श्रोताओं नमस्कार और आदाब। मैं शेबा खातून आज का मधुरिमा कार्यक्रम मेरे साथ। एक सदा सी गूंज रही थी हवाओं में, पत्तों की सरसराहट भी मानो कुछ कह रही थी, कहीं ये वही पुकार तो नहीं जिसका इंतजार था।

0: दोस्तों, मधुरमा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटते हैं।
1: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

दोस्तों, मधुरिमा कार्यक्रम में आज हमने जिन फिल्मों के गीतों को शामिल किया, उन फिल्मों के नाम हैं राजकुमार, याराना, इज्जत, घर और कुर्बानी।

इसी आखिरी गाने के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा खत्म करने की शेबा खातून को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: మధురిమా ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ మధురిమా
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
2: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में 24 व 25 मई को दो दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रतिभाग किया। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री केपी मलिक की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी के कारण डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि
3: धूप में निकले सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां अस्पताल का रख रखाव और चिकित्सकों का व्यवहार IPD OPD अच्छी स्थिति में है।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना डोर टू डोर अमरोहा में 22 मई से शुरू हो चुकी है जो कि 20 जून तक चलेगी। जिले में अब तक 3005

0: 2018 परगणकों द्वारा 95,000 मकानों का सूचीकरण व गणना कर ली गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि
1: हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सेंसस कर्मचारी आपके घर पे आए, आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दें। आप उनको पूरा डेटा एकदम शुचिता से अवेलेबल कराएं। इस डेटा का जो उपयोग है, भारत के जनगणना में जो डेटा मिलता है उसका पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में उसका रोल होता है। जितना शुचितापूर्ण डेटा होगा उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और उतनी अच्छी लोकोन्मुखी स्कीमों का धरातल पर क्रियान्वयन किया जा सकेगा। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन पूरी और एकदम एक्यूरेटली दें, इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन वाली कार्रवाई किसी के भी विपरीत नहीं की जाएगी। ये केवल एक डेटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा हर समय कायम रखें।
0: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में अमरोहा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विकास भवन सभागार में 1 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्तर पर कुल 18 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर अमरोहा के 6 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 29 मई को अमरोहा में अनेक स्थानों पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गजरौला में हवन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों एवं क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ से हुआ। इसके उपरांत आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की आशा और विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं तथा देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर 1 जून को अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनौरा, गजरौला एवं हसनपुर ब्लॉक के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने कहा कि समय की मांग है कि सभी किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को पहचानने और उसमें आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य, भूजल स्तर एवं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह ने फसलों के साथ साथ सब्जियों एवं बागवानी में कृषकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग करने के कारण इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण लाभदायक कीट एवं मधुमक्खियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित तोमर ने जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे।
2: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
3: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए और कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। मंत्री ने पौधारोपण को प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरोधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई में लापरवाही करने पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम

0: में दोनों मंत्रियों ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और गांवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की पहल को और मजबूत किया गया। जनपद कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बारिश और गरज चमक से भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन, राहगीरों और किसानों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले सप्ताह हुई बौछारें और बादलों की आवाजाही ने चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं, लू से काफी हद तक निजात दिलाई। बारिश के कारण पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक और हवाओं में ताजगी महसूस हुई। प्री मानसून की इस बारिश ने खेतों और पेड़ पौधों को नई जान दी है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने की स्थिति भी देखी गई है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस तिस्ती रसूलाबाद से केंजरी रूरा होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के नाम पर हुए 400 करोड़ के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मूसानगर थाने में FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम सभाओं की जमीनों का पुनर्ग्रहण निरस्त कर दिया है। 761.41 एकड़ जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके ग्राम सभा के नाम निहित करने का आदेश जारी हो चुके हैं। कानपुर देहात के गौसगंज भोगनीपुर मूसानगर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वावधान में नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। अहिल्या आर्मी भारत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के अनेकों मंदिर, घाटों, धर्मशालाओं, कुओं और सड़कों का निर्माण कराया था। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और महेश्वरी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। कानपुर देहात में हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन को दिया। राज्य मंत्री ने कहा, ऐसे सम्मान से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम बीमा देवी, उम्र करीब 37 वर्ष, पति का नाम जितेंद्र कुमार। बीमा देवी की हुलिया इस प्रकार है, कद 5 फीट 5 इंच, ये हरे रंग की साड़ी, पैर में काली चप्पल और पर्स लिए हुए हैं। ये 24 मार्च 2026 सुबह 9 बजे अपने घर से 3 साल के बच्चे के साथ दवा के लिए निकली और घर वापस नहीं लौटी। पोस्ट बेसड़ा, जिला मिर्जापुर की निवासी हैं। इनके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचना दें। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर।

थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम रामाराव लिंगम उम्र 58 वर्ष, संरक्षक का नाम उमा माहेश्वर राव लिंगम। रामाराव लिंगम की हुलिया इस प्रकार है, रंग सांवला, सफेद काले बाल, दोहरा बदन, ये पिंक शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए हैं। ये 14 फरवरी सन 2026 मीरघाट से लापता हैं। इनका पता है अनकापल्ली थाना बचपुकुत।

जिला श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। इनके बारे में अगर किसी को जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचना दें, थाना दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी, या अपने नजदीकी थाने में सूचना दें।

एक और गुमशुदा के बारे में सूचना सुनिए। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा का नाम प्रेमकली हरिजन, उम्र 23 वर्ष, पति का नाम कृष्ण कुमार हरिजन, कद 4 फीट 6 इंच, रंग गोरा, ये गुलाबी कलर की साड़ी पहने हुए हैं। ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ थाना ब्रमंडगंज जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं। ये 9 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे दवा के लिए घर से निकली और फिर घर वापस नहीं आई। इनके बारे में अगर किसी को जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचना दें। प्रभारी निरीक्षक ब्रमंडगंज मिर्जापुर या अपने निकटतम थाने में सूचना दें।

0: खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।
2: हम गवन मनाही जय बे बिनार झूलनी, हम गवन मनाही जय बे बिनार।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
4: ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के, जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

आप उर्दू में लिखते रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए ऐसे शख्स की जहानत का आलम क्या होगा। आप आज़ादी की मुहिम से भी जुड़े रहे। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशाल, रूह कायनात, नगमाए साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज व कायनात, चिरागा, हजार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयाँ और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियाँ भी लिखीं। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी

इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं राम जियावन और साथी। पहले सुनते हैं देवी गीत।
6: अरे महीमा।

अरे तपसिन से बतिया के कहां जाला हो, के अब कहां जाला।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार थे राम जियावन और साथी। इसी के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, ये थी झनकार प्रोग्राम की पहली पेशकश आरजू फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत हसन जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। अब लीजिए सुनिए अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नजराना फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब लीजिए सुनिए नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, शैलेन सिंह की आवाज में बॉबी फिल्म का गाना। अब लीजिए सुनिए आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आशा भोसले और अनवर की आवाजों में। गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत से सजाया है खय्याम ने।

आ गले लग जा। अब लीजिए सुनिए इसी फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है साहिल लुधियानवी और संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाइड फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था ST बर्मन ने। अब लीजिए सुनिए शोर फिल्म का गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ। आपके फरमाइशी पत्रों के साथ आज के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं। और पहला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है साजन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।
1: की डोरी

0: और इनके परिवार के सभी सदस्य रायगढ़ बाबा कुटीर से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, अंजलि चौहान, ऋतिका और इनके मित्रगण, जमानिया रेलवे स्टेशन से देवी दयाल चौरसिया, डीडी चौरसिया, दर्पण कुमार चौरसिया, पवन कुमार चौरसिया और जगमोहन चौरसिया। इसी गीत को सुनना चाहा था एडवोकेट वारिस अली खान, डॉक्टर शहनाज, शकील अहमद और इस्लामुन निशा, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। छत्तीसगढ़ से ये फरमाइशी संदेश है, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक। और ये फरमाइशी पत्र आया नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी, मदनेश्वर सिंह, अमित कुमार, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, लाल बहादुर, जयराम बिंद, विद्या, संध्या और वीरेंद्र पांडे। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच से देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना, ना, ना।

आप सुन रहे थे साजन फिल्म का गीत, और इस गीत की फरमाइश जिन श्रोताओं ने पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाई, ये फरमाइशी पत्र है यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान।

0: शनिवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आराधना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। और इस गीत को सुनने की फरमाइश मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा नानू, नेहा सागर गुंबर और हिमांशु गुगलानी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। सुनना चाहा डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय, ग्राम भड़भूजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भावरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश, लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, ऋषभ राज और पुष्पराज। और ये फरमाइश आई चांडूर बिस्वा तालुका नांदूरा बुल्डाना महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़ से रक्षाताई ललिता, संजना, गणेश और कार्तिक, और यहीं से मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे महुआ फिल्म का गीत, और इस गीत को पसंद किया था मढ़ा मऊ से दीपा, उषा, अनुराग और भारती। अलका डबवाली से, यहीं से वसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का फरमाइशी पत्र। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश। धनबाद से प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद और प्रतिभा रंजन प्रसाद। और अस्तुपुरा मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद।

अपना देश, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। और अगला गीत नया दौर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें। और इन दोनों ही गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइशें हमारे इन सभी श्रोताओं की। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल, शिवम जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल और डिम्पल जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल और दुर्गेश जायसवाल, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी, विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान चनेहटी बरेली से, लच्छनपुर से रामजी साहू और जीवन लाल रजक, और हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल।

राकेश कुमार पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल, कच्ची सराय दाल मंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सेराज आलम, मोहम्मद समत, रोजी अलीशा, फरमाइश आई मूप का भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा। और ये फरमाइशी पत्र है अकोले महाराष्ट्र से सुनील साठे, लता साठे, शुभम साठे और शुभांगी का। अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद्र बड़के, फुलवा मेहता, विकास और नीलेश। और नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह, पिंटू, सुरिंदर कुमार, जगमोहन साहनी। तो चलिए आपको सुनवाई देते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है नया दौर।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म का गीत, और इस गीत के लिए पसंद इन सभी श्रोताओं की त्रिपड़ी पटियाला से मुकेश बाछल, राकेश बाछल, संदीप, अमनदीप, आकाशदीप, मनीषा और जतिन, वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित, पुलकित और उनकी दादी जी, छोटी पियरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी, पुष्पा, विजय लक्ष्मी, कुसुम लता सिंह, और एकता कॉलोनी रोहतक से ये फरमाइशी पत्र सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। मस्तूरी ग्राम मचहा छत्तीसगढ़ से राजकुमार पटेल, गोमती पटेल, धनय कुमार पटेल, टीकेश पटेल। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा, और ये है हमारे श्रोता राम सकल चौधरी, सूरज, शिवम, सत्यम, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य, मौनी बाबा धाम चोचकपुर गाजीपुर से। त्रिलोचन घाट वाराणसी से राजेंद्र प्रसाद केशरी, सावित्री रंगोली और आशुतोष केशरी। करौता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति और राहुल प्रजापति। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पथ,

दिन बहार के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज़ थी। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता पिपरिया कबीर धाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन, जय कुमार, इंद्राणी और माया, विद्यानगर परली वैजनाथ से मास्टर आरजी फड़, विजय धनंजय, गणेश, ऋषिकेश, अर्चना और प्रतीक्षा, हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, और ये रजानगर वाराणसी से नफीश अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीश अहमद अंसारी, शकील अहमद अंसारी और सुनील रस्तोगी, भोसले की आवाज़ थी। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता पिपरिया कबीर धाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन, जय कुमार, इंद्राणी और माया, विद्यानगर परली वैजनाथ से मास्टर आरजी फड़, विजय धनंजय, गणेश, ऋषिकेश, अर्चना और प्रतीक्षा, हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, और ये रजानगर वाराणसी से नफीश अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीश अहमद अंसारी, शकील अहमद अंसारी और सुनील रस्तोगी, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव, और ये फरमाइशी पत्र है धमतरी छत्तीसगढ़ से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, गजेंद्र कुमार चंदन। पसंद आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव और शाइना शर्मा का, और रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

आनंद आश्रम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम का आखिरी गीत अब हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना और इन दोनों ही गीतों के लिए फरमाइश जिन श्रोताओं की है, सहावर टाउन कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका यादव और सुशांत नायक, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, ईदगाह रामनगर से लंबे बाबू नौशाद, लखू बेलाल शमा, सुगन नौहेद जरीन और बाबू अंसारी, दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, सुरभि शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, शंकरलाल, राहुल कुमार, सविता, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गुहानकर, सरिता, वैशाली, शैलेश, सुमित कुमार और सिद्धांत, जौनपुर से चंदा, चांदनी, आकाश कुमार और इनके मम्मी पापा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, फरमाइश आई खमहरिया विलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार, डीएलडब्ल्यू

श्रोताओं, ये था आज का आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम आज आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीठी मेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता।

0: मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
0: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
0: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी। परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है। कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से।

0: उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है

0: सर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथ,
2: जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुदुवनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।

0: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
1: हाँ हाँ
0: उठाकर मुझे दे।
1: अच्छा ये लो कोयले का टुकड़ा।
0: हाँ
1: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
0: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
1: अरे वाह।
0: और ये इसकी पूंछ।
1: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
0: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
1: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
0: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
1: ठीक है
0: अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई
0: हाँ?
1: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
0: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है
0: चल चल चल चल, चल।
1: हाँ,
0: हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: हाँ, ठीक है, चल, चल, चल, चल, चल,
2: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
3: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ

0: कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राजचित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब यह हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नवयुवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा कर

0: में से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
0: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
3: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुगम संगीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
8: हमारी जनगणना, हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों

0: की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं महुआ बैनर्जी।

अभी आप सुन रहे थे गीत। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है महुआ बैनर्जी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गीत। कलाकार थी महुआ बैनर्जी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वॉयलिन वादन। कलाकार हैं डॉक्टर वी बालाजी। राग है शुद्ध सारंग। आपके साथ तबला संगति चंदन विश्वकर्मा की।

0: अभी आप सुन रहे थे वॉयलिन पर प्रस्तुत राग शुद्ध सारंग। कलाकार थे डॉक्टर वी बालाजी, तबला संगति चंदन विश्वकर्मा की। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और

0: वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे निर्मल सैनी का गिटार वादन। रात्रि 10 प्रसारण होगा कवि गोष्ठी का। प्रतिभागी कवि होंगे अबरार हसन, मधुलिका राय, तरुण पांडे और यूनुस अंसारी। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:10 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चित्रा सिंह की गाई गजलें। समय रात्रि 8 का होगा। आज सायं 7:31 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। वाचन स्वर आशुतोष और सना सलीम, प्रस्तुति अशोक कुमार पांडे की होगी। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें पीलिया रोग कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर डॉक्टर विवेक राय से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के साथ ही किसान भाई सुनेंगे राम जियावन और साथी का गाया लोकगीत। आज सायं 7:31 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। वाचन स्वर आशुतोष और सना सलीम, प्रस्तुति अशोक कुमार पांडे की होगी। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें पीलिया रोग कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर डॉक्टर विवेक राय से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के साथ ही किसान भाई सुनेंगे राम जियावन और साथी का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और इसके साथ ही वार्ता सुनवाएंगे, जिसका विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय माध्यम। वार्ताकार होंगे आदित्य प्रकाश। दिन 1:15 पर बहने अपना गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगे, जिसमें कैंसर रोग समय पर पहचान जरूरी इस विषय पर डॉक्टर असीम मिश्रा से आकांक्षा सिंह की बातचीत बहनों को सुनवाएंगे। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम सुनिएगा दिन 2:30 पर। आज का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गाने। फिल्म संगीत शाम 5, शाम 6:10 पर और शाम 7। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माया देवी, जिनके पति का नाम स्वर्गीय फूलचंद्र, ये निवासिनी है ग्राम कनकपुर थाना महाराजगंज अयोध्या की। ये 30 मार्च 2026 से विंध्याचल से लापता हैं।

0: माया देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार, इनकी उम्र है 50 वर्ष, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फुट 4 इंच और इनका चेहरा गोल है। अगर आपको माया देवी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थाना अध्यक्ष कोतवाली विंध्याचल को सूचित करें और सूचना के लिए फोन नंबर है 9956397256। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्णिमा विश्वकर्मा, जिनके पिता का नाम है राम गोपाल विश्वकर्मा, ये निवासिनी है ग्राम बरौधा कछार, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मिर्जापुर की। पूर्णिमा विश्वकर्मा 27 मार्च 2026 से लापता हैं। पूर्णिमा विश्वकर्मा की उम्र है 25 वर्ष, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ और इनका चेहरा गोल है। अगर आपको पूर्णिमा विश्वकर्मा के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप इस नंबर पर सूचित करें 9794643535, 9794643535। सूचना आप नजदीक के पुलिस थाने में भी दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। इलाकाई खबरें आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।
1: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर को रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे लखनऊ मरकज को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अख्तियार मिल जाएगा। लखनऊ में मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों में जितनी तरक्की वजीर आज़म के दौरे इक्तदार में हुई है कभी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 तक सिर्फ 17 मौसम राडार थे, अब 50 हो गए हैं, आइंदा 2 बरसों में 2 और जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि RMC का दर्जा गंगा के मैदानी इलाकों तक ज्यादा रसाई फराहम करेगा। RMC का ओहदा उत्तराखंड के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों मौसम की निगरानी, दुरुस्त पेशेंटगोई और बरवक्त कबल अज वक्त वार्निंग खिदमात को मजीद मजबूत करेगा। इससे भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और मौसम से मुतालिक दीगर वाकयात के लिए बेहतर तैयारी मुमकिन होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बराह रास्त भर्ती 2025 का तहरीरी इम्तिहान आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुआ। इम्तिहान 8, 9 और 10 जून 2026 को रियासत के तमाम 75 अजला में मुनक्किद होगा। भर्ती के अमल के तहत 72,679 असामियों के लिए 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। इम्तिहान के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सफर के दौरान किरायों में 50% रियायत फराहम की जा रही है। इम्तिहान रोजाना 2 मरहलों में लिया जाएगा। पहला मरहला सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा मरहला दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड डायरेक्टर जनरल SB शिरोडकर ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान की बड़ी तादाद को देखते हुए हर शिफ्ट में तकरीबन 4,81,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान के पुरमन निकात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया, महकमे पुलिस और जिला हुक्काम की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इम्तिहान मराकज की कड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV निगरानी के निजाम नस्ब किया गया और मराकज पर मुस्तकिल मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर्स और पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में उम्मीदवारों को नेक ख्वाहिशात दी हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम पाती में लिखा कि सनातन सकाफत में फितरत में मौजूद हर जानदार चीज को तख्लीक का अटूट हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनु के तहफ्फुज़ की कोशिशें उसी वक्त कामयाब होगी जब अवामी शराकत बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रियासत के बाशिंदों से खिताब करते हुए वजीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो फितरत को न सिर्फ सयाहों के तौर पर बल्कि तालिब इल्मों के तौर पर दरियाफ्त करें, अपने तजुर्बात को व्लॉग्स और मजामिन के जरिए शेयर करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक दीगर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वजीर आजम की क्यादत में बेमिसाल 12 साल जिसमें हिंदुस्तान में लाखों महरूम खानदानों की जिंदगियों में इज्जत, सलामती और एतमाद की शानदार दास्तान है। उन्होंने लिखा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने वाला ये 12 साल का सफर सिर्फ स्कीमों का सफर नहीं है बल्कि घरों का सफर है जहां पहली बार सहूलियात पहुंची। इन खानदानों का सफर है जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि हुकूमत उनकी दहलीज पर पहुंच गई है। उन्होंने इन तारीखी 12 बरसों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहे दिल से

0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करने के बाद और भी अच्छे हो गए इमरती जी।
1: कार्यक्रम मैं हमेशा सुनती हूँ और विश्व रेडियो दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ साथ जितने भी रेडियो श्रोता सुन रहे हैं सबको शुभकामनाएं। और इमरती जी, आपको रेडियो सुनना कितना पसंद है?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मतलब पुराने समय से मैं सुन रही हूँ, 2009 से मैं बचपन में सुनती हूँ, लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम जो है वो 2009 से सुन रही हूँ।
0: कार्यक्रम में क्या बहुत अच्छा लगता है आपको?
1: सारे प्रोग्राम जितने भी मतलब वाराणसी से जो प्रसारित होते हैं वो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: जैसे किसी का नाम बताना चाहेंगी आप?
1: भारतीय कार्यक्रम वो भी पसंद आते हैं।
0: अच्छा,
1: हर कार्यक्रम में सुनती हूँ और भाग भी लेती हूँ।
0: अच्छा, रेडियो से जुड़ी हुई कोई आपकी यादगार पल ऐसे हैं, कोई खट्टी मीठी यादें हैं?
1: कोई यादगार तो नहीं है, लेकिन मैं जब भी सोती हूँ तो मैं छोटा रेडियो साथ में मैं पहले लेकर सोती थी।
0: अच्छा, और अब
1: याद है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारा रेडियो अगर कभी खराब हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है,
0: इसलिए
1: मन नहीं लगता।
0: हाँ, और अब कैसे सुनती हैं? मोबाइल पे सुनती हैं या अभी भी पॉकेट?
1: नहीं, रेडियो सेट है हमारे, मोबाइल पे नहीं सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: रेडियो सेट है, बड़ा वाला, बड़ा साइज का है।
0: अच्छा, और आपके घर में और भी लोग रेडियो पसंद करते हैं कि सिर्फ इमरती जी को?
1: उतना किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई सुनता नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा सुनती हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
0: रेडियो आपको बहुत पसंद है और आपकी एक अनोखी दुनिया होगी रेडियो, उसके साथ आप क्या कुछ कल्पना भी करती हैं?
1: हमारा समझ लीजिए जीवन साथी की तरह है रेडियो, हमारे घर का एक समझ लीजिए हिस्सा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, अकेलापन महसूस नहीं होता है रेडियो से।
0: बहुत अच्छी बात है आपकी, लग रही है हमको सुन के।
1: बहुत सारे हमारे दोस्त भी बने हैं जो रेडियो जो सुनने वाले हैं।
0: अच्छा, आपके श्रोता आपके साथी हो गए हैं?
1: जी, बहुत से सारे श्रोता हैं, एक श्रोता तो हमारे बहुत ही नियमित हैं।
0: अच्छा अच्छा, इमरती जी आप कुछ गाना वाना भी गाती हैं, गुनगुनाती हैं रेडियो के साथ?
1: थोड़ा बहुत रेडियो।
0: अच्छा, तो अगर आप हमारे साथ साझा करने चाहेंगी अपने कुछ पल ऐसे खूबसूरत से जो गीत आपको बहुत पसंद हो?

0: बहुत खूबसूरत गीत। और इमरती जी, आपके नाम के जैसी आपकी आवाज भी मीठी है और ये गीत भी आपने बहुत अच्छा सुनाया। कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शबनम जी, ये तो इमरती देवी जी के विचार रहे। और वैसे अगर इसी तरह अगर देखा जाए ना
2: जी,
1: तो किसी का भी वक्त रेडियो के पास आकर कुछ यूं ही गुजर जाता है ना।
2: बिल्कुल, और आपकी बात अगर हम कहें ना निशा, तो आपका भी वक्त गुजर जाता होगा। और बहुत सारी सखियां ना बस काम करते करते अगर वो प्यारा सा गीत सुन लेना तो उनका भी वक्त गुजर जाता है कुछ इस तरह से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: शबनम जी, कहा गया है कि जल है तो जीवन है।
7: बिल्कुल
6: है ना, क्योंकि पानी हम सब के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं, हमारी सखियां भी जानती हैं।
7: बिल्कुल, और जब गर्मी आ जाती है तब कुछ ज्यादा पता चलता है। और आज की बात करें सखियों, तो आज है विश्व महासागर दिवस, और ये दिन समुद्र के महत्व, उनसे मिलने वाले संसाधन और उसके संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। और निशा, कहते हैं कि महासागर जो है वो पृथ्वी के फेफड़े और जीवन का मुख्य आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को, जलवायु को नियंत्रित करने में भी ये हमारा सहायता करते हैं, सहयोग देते हैं।
6: बिल्कुल, और हमारे पर्यावरण के लिए इतना जरूरी होने की वजह से हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें गंदगी ना करें, कचरा ना फेंकें और इसको साफ सुथरा रखें, बचाए रखें।
7: बिल्कुल, और क्योंकि देखिए समुद्र में बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं, बहुत सारी खनिज होते हैं, और वैश्विक व्यापार के लिए भी ये बहुत अच्छा साधन है, और बहुत सारी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो भी हमें इनसे मिलती हैं। और अगर हम जीवन की बात करें तो हम सभी चाहते हैं कि जो भी हम लोग हैं वो निरोगी रहे। कहते भी है सबसे बड़ा धन जो है निरोगी काया है। और जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर का नाम सुनते हैं तो एक अजीब सी सिहरन सी हो जाती है। तो आज हम सखियों को एक बातचीत सुनवाने जा रहे हैं, कैंसर रोग समय पर पहचान

0: क्यों है जरूरी? असीम मिश्रा डॉक्टर से बात कर रही हैं आकांक्षा सिंह।
1: सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कैंसर जब इस बीमारी का नाम आता है तो अनायास ही घबराहट मन में आ जाती है। ये क्या है, क्यों होता है, क्या इससे बचा जा सकता है, इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असीम मिश्रा। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।
1: सर, एक आम भ्रम या एक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी रूप में भी कैंसर हुआ है, तो सबसे पहले सर एक बेसिक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, कैंसर है क्या?
2: कैंसर हमारे शरीर में जब भी कोई कोशिकाएं जो सेल्स होते हैं जब वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगे और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ जो उनका बेसिक नेचर होता है उसको भूल के वो बहुत अलग अलग फंक्शन करने लगते हैं तो वो कैंसर होता है।
1: अच्छा।
2: आम भाषा में उसको बोलें तो हम बोलते हैं कि कर्क रोग, जो तो वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं सेल्स जिसकी कोई ग्रोथ की लिमिट नहीं। नॉर्मली क्या होता है, एक सेल बढ़ेगा, 10 बार मल्टीप्लाई करेगा, 20 बार मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाता है। ये हर सेल की एक नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन जब वो सेल लगातार मल्टीप्लाई करता जाए और जो उसका फंक्शन है बॉडी का, जैसे मान लीजिए मुंह में है तो जहां पे नॉर्मल फंक्शन है थूक बनाने का या खाना हजम करने का, वो ना होते हुए कुछ और फंक्शन ही करने लगे और वो पूरे शरीर को फिर टेक ओवर कर ले, तो ये कैंसर होता है।
1: अच्छा सर, एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कैंसर के मामले में क्या कह सकते हैं कि समय पर अगर पहचान हो जाए इस रोग की या डायग्नोसिस हो जाए तो इसका क्या मतलब है, क्या मरीज को बचाया जा सकता है?
2: देखिए, कैंसर में सबसे पहली बात तो जो आप बात कर रही हैं तो एक आपके क्वेश्चन में ही एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है जैसे कि कैंसर क्या हो गया है, कैंसर हाँ। कैसी चीज है। देखिए, सबसे पहली विडंबना यह भी है कि कैंसर जब लोग बोलते हैं तो उनको ये लगता है कि अब मृत्यु निश्चित है, पहली चीज। दूसरी चीज उनको लगता है कि इलाज ही नहीं है इसका, और तीसरी चीज उनको लगता है कि इलाज अगर होता भी है तो बहुत महंगा होता है, तो हम इसका इलाज करवा भी पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। और ये तीनों ही चीजें जो हैं ये एक ही चीज की वजह से हो रही हैं, वो होती है अवेयरनेस, कि हमको मालूम ही नहीं है, उसके बारे में जागरूकता ही नहीं है। अगर लोगों को जागरूकता होगी तो ये तीनों प्रश्न कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि कैंसर का इलाज संभव है, कैंसर का इलाज इतना महंगा भी नहीं कि नहीं हो सकता, और हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे साधन हैं जिससे उनका इलाज संभव है और हो सकता है। और कैंसर हो गया है इसका मतलब मृत्यु निश्चित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: जी सर, आपने कहा कि इलाज संभव है, तो प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के जो साधन हैं थोड़ा उनके बारे में जानकारी दे दें कि किस तरह पहचाना जा सकता है।
2: तो कैंसर को पहचानने के लिए देखिए, किस जगह का कैंसर है, उसके अलग अलग शरीर में किस भाग में कैंसर है। जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर अगर देखें तो तंबाकू, गुटखा, पान मसाले की वजह से जो है वो मुंह के कैंसर बहुत कॉमन है
1: जी।
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, ये सब भी कैंसर बहुत सारे कॉमन है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम बात करते हैं उन कैंसर की जिनको पहले डायग्नोज किया जा सकता है और जिनको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। उसमें मुंह का कैंसर जो है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि वो होता है गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब के सेवन से। अगर इसका सेवन बंद हो जाए या समाज से ये चीज हट जाए तो थोड़े समय में कैंसर अपने आप ही जो ये वाले कैंसर से वो खत्म हो सकते हैं
1: जी।
2: तो इसको जानने के लिए, इसको रोकने के लिए सबसे तरीके रहते हैं ये हैं कि अर्ली डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, नेशनल ओरल हेल्थ मिशन चल रहा है जैसे, उसमें ओरल की कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हम सभी गांव में, सभी घरों में, सभी जगहों पे जो भी तंबाकू, पान मसाला, गुटखा खाते हैं वो हाई रिस्क वाले ग्रुप होते हैं
1: जी।
2: उन लोगों को हम देखते हैं, मुंह का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कहीं सफेद छाला, चिकत्ता या लाल दाग या कुछ भी है अगर मुंह में, तो उन लोगों को प्रेरित भी किया जाता है कि भाई आप आइए, जांच करा लीजिए, अगर है बीमारी तो उसकी जांच होकर ठीक हो सके। तो ये कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से है कैंसर को रोकने के लिए, जल्दी पता करने के लिए। अब दूसरी चीज है कि अगर आप अपने आप से जागरूक हैं और इस तरह के हैबिट्स हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, और अगर आपके मान लीजिए चेकअप कर रहे हैं खुद से भी, अगर आप देख रहे हैं कि मुंह में कोई छाला दाग वगैरह नहीं हो रहा है, अगर है तो उसकी तुरंत जांच करवा रहे हैं, तो उससे ये अर्ली डायग्नोज भी हो जाएगा
1: जी। जितनी जल्दी पता हो सके इलाज उतना जल्दी और अच्छा संभव हो सकता है।
2: और इसमें एक और चीज है कि इसको हम लोग कैंसर होने से पहली वाली स्टेज में, जिसको प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं, उसमें भी पकड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए सफेद छाला है, दाग है, उसमें अगर डिस्प्लेसिया शुरू हुआ है, यानी कि कैंसर नहीं हुआ है, उसे पहले वाली स्टेज में ही हमने उसको पकड़ लिया, तो तभी इलाज कर दिया, तभी उसको इंटरवेंशन कर दिया, तो वो पूरी तरीके से बच सकता है कैंसर होने से।
1: जी।
2: और उसमें कोई भी दवाई ये नहीं होता है क्या, उसमें ये होता है कि अगर सफेद दाग छाला कुछ भी है मुंह में तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन छोड़ देना है, मुंह की सफाई रखनी है अच्छी तरीके से, और उसकी जांच करते हैं एक बायोप्सी के फॉर्म में देखने के लिए कि उसमें कैंसर हुआ तो नहीं, डिस्प्लेजिया अगर है, और अगर है डिस्प्लेजिया तो हम उसको निकाल देते हैं उस छोटे से हिस्से, तो बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, 2-3 मिनट का ऑपरेशन होता है।

0: से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और आगे हम हैबिट ना फॉर्म करें तो ये बचा रहता है। तो ये सभी लोगों को इसकी जागरूकता रखनी चाहिए और सभी लोगों को दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।
1: सर ये तो हो गया ओरल हाइजीन और ओरल कैंसर की बात, तो क्या यही नियम शरीर के अन्य हिस्सों में भी लागू होते हैं? मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर की हम बात करते हैं जो इन दिनों मतलब गति से बढ़ रहा है।
0: तो देखिए कुछ कैंसर्स हैं जो होते हैं हमारे जैसे कि हाइजीन की वजह से, तो हाइजीन वाले कैंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स होते हैं
1: जी।
0: तो उसमें आते हैं सर्वाइकल कैंसर्स जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर्स होते हैं, वो कैंसर्स तो उसमें होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से वो होते हैं। अगर वो उसमें उसके रीजंस होते हैं कि अगर किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं और अगर उनकी जेनिटल हाइजीन जो है उसमें उन्होंने नहीं रखते हैं या उसमें बार बार कुछ इन्फेक्शन हो रहा है और उसका इलाज भी नहीं हो रहा है और उसको हम हाइजीन बनाने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर्स महिलाओं में होने के रिस्क बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा अगर कोई भी इन्फेक्शन रेगुलरली हो रहा है, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन अगर होते हैं, इन सब की इन्फेक्शन की वजह से लिवर कैंसर वगैरह का भी इंसिडेंस बढ़ता है, उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा शरीर में जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो उसके अलग अलग जेनेटिक कारण है, उसके अलावा उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कम होते जाने का एक कारण है, ओबेसिटी मोटापा अगर हमारे उसमें ज्यादा है तो उसकी वजह से कैंसर होते हैं, जैसे कोलोन कैंसर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। थायरॉयड के कैंसर हैं ज्यादातर रेडियो एक्टिव आयोडीन है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के एक्सपोजर की वजह से कह सकते हैं, आयोडीन की कमी है उनकी वजह से हो सकते हैं
1: जी।
0: तो ये बहुत सारे कैंसर्स हैं, उसके बहुत सारे प्रकार, अगर हम सबके बारे में बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो कैंसर्स जिनका बचाव पूरी तरीके से संभव है, वो हैं मुंह के कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर्स देखते हैं जिसमें कि हाइजीन की वजह से होते हैं या फिर जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स और इन सबके इन्फेक्शन की वजह से उस तरीके के कैंसर जो ड्रग्स वगैरह की वजह से होते हैं, तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। क्योंकि इस समय हमारे देश में या पूरे विश्व में बात करें तो इस तरीके के कैंसर लगभग 50-60% से ज्यादा हैं जो इस तरीके की चीजों की वजह से हो रहे हैं।
1: अगर सावधानी बरती जाए तो ये पूरी तरह से क्योरेबल है,
0: ये मतलब होंगे ही नहीं, ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है और ये होंगे ही नहीं अगर हम इस तरीके का सेवन करते, उसमें बिल्कुल चांस खत्म हो जाए।
1: तो सावधानी में ही सुरक्षा है ये हम कह सकते हैं। सर कैंसर रोग जो है उसके कुछ सामान्य चेतावनी संकेत कौन से हो सकते हैं?
0: तो देखिए कैंसर को होने के लिए कुछ मुख्य लक्षण है जिसमें सभी लोगों को बताया जाता है कि किसको कैंसर हो सकता है, वो कोई भी तरीके कैंसर हो, चाहे मुंह का हो, चाहे पेट का हो या कहीं और भी शरीर के किसी भी हिस्से को। अगर कहीं पे भी कोई छाला या गांठ या कोई जख्म हो रहा है
1: जी,
0: जो ठीक नहीं हो रहा है, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और ठीक नहीं हो रहा है इलाज कराने के बावजूद भी, मुंह में अगर कोई छाला है, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और वो जख्म बढ़ता जा रहा है, तो मुंह का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है, लंप है, अगर यहां पे कोई महसूस हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें कैंसर होने का रिस्क है। उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर जो सबसे प्रमुख है महिलाओं में, अगर मान लीजिए कोई रक्तस्राव हो रहा है या पस डिस्चार्ज हो रहा है अगर गर्भाशय से, तो उसमें अगर उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है या, तो उसमें कैंसर होने का रिस्क है। तो ये सारी चीज संकेत होते हैं कि अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पे तुरंत संपर्क करें और उसका जांच करवाएं, तो ये तो उसी समय पकड़ में आ जाएंगे और उसी समय उसका इलाज संभव होता है। और उसके बाद कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपका वजन बहुत कम हो रहा है, लगातार वजन कम हो रहा है किसी का बिना किसी कारण, कोई एक्सरसाइज कर रहा है वजन कम हो रहा है तो वो नहीं, लेकिन बिना किसी कारण से वजन कम हो रहा है, या मान लीजिए हमारे पैखाने की जो रूटीन है वो चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा होने लगे हैं या बहुत कम होने लगे हैं और बहुत समय तक ऐसा होता जा रहा है, तो हो सकता है, या उसमें कहीं रक्त स्राव हो रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है या मुंह से कहीं खून निकल रहा है या कहीं चोट लग रही है इस तरीके से शरीर में, तो ये सारे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं।
1: सर शुरुआती लक्षण है तो लक्षणों को जो नजरअंदाज करना हम कहते हैं ना, इसके कई नुकसान किस तरह से हो सकते?
0: तो देखिये अगर आपके शरीर में कोई ऐसी चीज है, पहली बात तो क्या होता है कैंसर की बीमारी के साथ में एक डर रहता है
1: जी,
0: और हमेशा वो रिजेक्शन से आता है कि हम मानते ही नहीं कि हमको ये बीमारी है
1: जी।
0: तो हर किसी को भी कुछ बीमारी हो तो वो मान जाता है नहीं हमको कैंसर नहीं, और ये अच्छी बात भी है कि हमको पॉजिटिव रहना होता है, लेकिन अगर कोई सिम्टम आपको हो रहा है तो उसको आपको डिस्कस कर लेना चाहिए पूरी तरीके से अपने डॉक्टर के साथ में कि ये समस्या है, और सिर्फ दवाई दे दी और ठीक नहीं होता इसका ये मतलब नहीं कि भरोसा कर लिया ठीक हो जाएगा, नहीं, आप उसको सही जगह पे सही सेंटर पे जांच भी करवा लें,
1: बिल्कुल
0: अपने डाउट को ज्यादा रखें। अगर मान लीजिए आपको कैंसर से डर लग रहा है, इतना डर है, भयानक लग रहा है आपको, तो उससे ज्यादा डर रहे तो उसकी जांच करवा के उसे खत्म कर दें।
1: हाँ।
0: मान के चलते हैं कि 90% नहीं होगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा और इलाज हो जाएगा।
1: मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो डर है और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं वो एक तरह से जांच में बाधा बन सकती हैं।
0: बिल्कुल, और मुंह के कैंसर में तो सबसे ज्यादा भ्रांति हमको ये लगती है कि आते हैं जो मरीज वो कहते हैं हमको बायोप्सी नहीं करवानी है क्योंकि मुंह का कैंसर दिखाई पड़ रहा है, और भी शरीर में बहुत सारे मरीज आते हैं तो वे कहते हैं कि हमको बायोप्सी नहीं करवानी है
1: जी।
0: क्योंकि एक मिथ फैली हुई है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है या लोहा लग जाने

0: से धातु लग जाने से कैंसर फैल जाता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है बहुत सारे लोगों में। उनको ये लगता है कि हम नहीं कराएंगे इससे हमारा इलाज खराब हो जाएगा, तो वो बायोप्सी करके जांच ही नहीं करवाते हैं। बायोप्सी अगर होगी बीमारी पता चल जाएगी और इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर इलाज ही नहीं शुरू होगा तो बिल्कुल शरीर में फैल जाएगा, तब मृत्यु निश्चित है।
1: जी, कीमोथेरेपी एक महत्वपूर्ण भाग है कैंसर के इलाज का, उससे भी जुड़ी कई भ्रांतियां हैं।
0: देखिए, हमारे शरीर में कुछ कैंसर्स हैं जिसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, सॉलिड कैंसर्स और लिक्विड कैंसर्स। लिक्विड कैंसर जैसे ब्लड के ल्यूकीमिया लिम्फोमा वगैरह होते हैं, और सॉलिड कैंसर जैसे हमने मान लिया मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर, जो एक किसी शरीर के मुख्य अंगों में होते हैं। तो देखिए, उनमें जो इलाज ज्यादातर कैंसर का होता है, जो सॉलिड कैंसर जैसे मुंह का कैंसर है, इसका इलाज होता है ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद में सिकाई होगी, कीमोथेरेपी होती है। ब्लड कैंसर का इलाज जो होता है वो कीमोथेरेपी द्वारा होता है। कीमोथेरेपी में लोगों की भ्रांति होती है, कीमोथेरेपी में बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत कमजोरी होती है और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो कराना जरूरी है कि नहीं इलाज कराना, ऐसा सोचते हैं। ऑपरेशन के लिए डर जाते हैं कि नहीं ऑपरेशन करेंगे तो पता नहीं कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उससे डर जाते हैं। तो पहले हमको यह समझना चाहिए कि कैंसर अगर हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आप उतने ही हाई पोटेंसी वाले इलाज से सबको गुजारेंगे।
1: जी,
0: तो आपका इलाज हो सकता है छोटा ऑपरेशन हो या कीमोथेरेपी, जरूरी नहीं कि आपको उसी तरीके से अफेक्ट करे जितने खराब किसी तरीके और को हुई थी।
1: जी,
0: तो क्या इलाज हो रहा है, उसको कैसे कर रहे हैं, अगर आप सही जगह पे इलाज करवा रहे हैं तो उतनी डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा, और डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि हाथ काट देंगे या मुंह का हिस्सा निकाल देंगे, वैसा नहीं होगा। उसको बनाने के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, तो हम जिस युग में रह रहे हैं उसके हिसाब से हमको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है।
1: जी,
0: उसका पार्ट आपके लिए कैसे लागू होगा उसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। जरूरी नहीं कि कैंसर हो गया कीमोथेरेपी दी जाएगी तो ये कहते हैं हम बचेंगे ही नहीं। जब हम उस भाव से अपने आप को सजेस्ट करके किसी के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी जब कोई बात बताते हैं तो लोगों को बहुत डर पैदा हो जाता है, उनको लगता है कीमोथेरेपी देंगे अब क्या होगा। नहीं, आप पूछिए क्या कीमोथेरेपी होगी, कितने समय तक दी जाएगी, कितनी साइकिल चलेगी, उससे क्या ठीक होने के लिए दे रहे हैं, कम करने के लिए दे रहे हैं, क्या मेरा इलाज क्यूरेबल स्टेट में है कि अब ठीक नहीं हो सकता। यही सब सवाल अगर आप पूछते हैं, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, जब पूछते हैं तो वही सवाल अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो उन सब चीजों का आपको सही आंसर भी मिल जाएगा और आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा।
1: तो डरना नहीं है, बहादुरी से लड़ना है इस बीमारी से। अच्छा सर, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न की, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?
0: देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक इंसान होने के नाते, या कुछ भी कहें, हम कभी भी कहीं पे भी खड़े हैं, तो हमारी एक चीज जिम्मेदारी होती है कि हमारा जो शरीर है उसकी देखभाल करना हमारा धर्म है।
1: जी,
0: तो अगर आपका शरीर है तो आपको उसको अच्छी तरीके से साफ रखना है, चाहे वो व्यायाम करना हो, चाहे उसमें आप क्या खा रहे हैं, इन सभी चीजों का आपको एक अवेयरनेस होना चाहिए। और रोज व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है और खुश रहना है, और यही एक मंत्र है कि यही सब चीजें हम करते हैं तो हम सभी बीमारियों से बच के रहेंगे, सिर्फ कैंसर से नहीं, हर तरह की बीमारियों से बच के रहेंगे।
1: सर, आप स्टूडियो में आए और कैंसर पर आपने हमारे श्रोताओं से इतनी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सखियां सुन रही थी अभी ये बातचीत जिसका विषय था कैंसर रोग समय पर पहचान क्यों है जरूरी। डॉक्टर असीम मिश्रा से बात कर रही थी आकांक्षा सिंह।
3: निशा, देखिए, कहते हैं कि मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से आईना भी धुंधला दिखता है। तो बस जिंदगी खूबसूरत है, आपका नजरिया खूबसूरत होना चाहिए। और आजकल अगर हम बात करें ना, तो घर परिवार में बहनें हमारी थोड़ी सी व्यस्त और अस्त व्यस्त हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे जब घर में होते हैं तो घर अस्त व्यस्त भी हो जाता है। और ये भी बात है ना सखियों की, देखिए, बच्चों की छुट्टियां हैं, हो सकता है आपकी छुट्टी ना हो या पति देव की छुट्टी ना हो।
4: हाँ, क्योंकि ऑफिस तो छुट्टियों में बंद नहीं होंगे, लेकिन गर्मी की छुट्टियां भाई बच्चों के लिए तो भाई उधम चौकड़ी मचाने वाला होता है।
3: हाँ, और एक वक्त था जब छुट्टियों का मतलब था कि नानी और दादी का घर, लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब जाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
4: ऐसे में किया ये जा सकता है कि अपने बच्चों को किसी ऐसे एक्टिविटी में बिजी कर दें कि उनका जो है ना, उनका रचनात्मकता भी बढ़ जाए और वो लोग बिजी भी रहें और
3: समय का सदुपयोग भी हो जाए।
4: हाँ।
3: वैसे भी बहुत सारे क्लासेस चलने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने पसंद के क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ बच्चों को अगर बाहर ना जाना हो तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
4: अब तो ऑनलाइन है।
3: वक्त बदला है और ये भी हो सकता है सखियों कि अगर आपके कुछ शौक हैं जो आप करना चाहती हो और आपके पास वक्त है बच्चों के साथ वक्त बिताने का, तो आप उनके साथ अपने उस शौक को भी पूरा कर सकती हैं और बच्चों को सिखा भी सकती हैं।
4: और ये भी देखें कि आपके बच्चों को कि क्या हॉबी है, उन्हें क्या पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद होगा।

0: करना पसंद होगा, तो उनमें क्या निखार सकते हैं
1: जी
0: वो चीज़ हम गर्मी की छुट्टी में कर सकते हैं।
1: और अगर मान लीजिए कि आपकी भी छुट्टियां प्लान कर ली हैं कहीं जाने के लिए,
0: हाँ
1: तो थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखते हुए सफर करें।
0: बिल्कुल, अरे सबसे ज्यादा तो उसमें ये जरूरी होता है ना कि जब हम सफर में होते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है ना एंजॉय करने के लिए भी
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो
1: और
0: खाना,
1: सफर में खाना कुछ अपने घर से अपना साथ में ले जाइए टिफिन, तो
0: हाँ
1: ज्यादा हेल्दी भी होता है।
0: हाँ
1: और बाहर की चीजें देखने में तो शायद अच्छी लगती हूँ, लेकिन रास्ते में खास करके आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप अपने घर से बनी हुई चीजें ले जा रही हैं, तो
0: हाँ
1: आपके
0: वो
1: स्वास्थ्य के लिए
0: पराठा
1: बहुत अच्छा।
0: सब्जी अचार रास्ते में परिवार का साथ और दोस्त,
1: लेकिन
0: वाह
1: उसमें भी सब्जियों में अगर आप प्याज वाज ना डालिए, जीरे
0: हाँ
1: और हींग का छौंक लगाइए, तो वो सब्जियां ज्यादा देर तक टिकती हैं। और बहुत तेल मसाले वाली चीजें मत रखिए कि तेल गिरने की भी दिक्कत होती
0: दिक्कत हो
1: है,
0: जाए,
1: चीजें खराब हो
0: और
1: सकती
0: गर्मी
1: हैं।
0: का मौसम है तो थोड़ा सा उसमें मतलब तेल मसाला कम रहेगा तो अच्छा है।
1: और साथ में पानी जरूर लेके जाइए, क्योंकि कहते हैं कि गर्मियों में पानी के बिना कुछ घंटे भी नहीं बिताए जा सकते।
0: बिल्कुल भी नहीं, और ये भी ध्यान देना होता है ना कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए।
1: और शरीर में पानी की कमी ना हो, तो इसलिए अपने साथ पानी भी जरूर लेके जाएं,
0: हाँ
1: सफर भी अच्छा आपका गुजरे।
0: नींबू पानी पीते रहें, ORS का घोल रखें साथ में।
1: और एक चीज बहुत खास होती है, गोंद कतीला, आप अगर उसे पानी के साथ मिला के रखिए तो आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। पानी खूब पीजिए, और घड़ी भी इशारा कर रही है कि हमें चलना है, पानी नहीं पीना है। तो सखियो फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आपका ये सफर जिंदगी का भी और रास्ते का भी खूबसूरत हो, आकाशवाणी का सफर भी खूबसूरत हो, इस आशा के साथ हमें यानी शबनम को
0: और निशा को
1: अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखियों के साथ,
2: सखियों के बाद,
1: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार हैं राम जियावन और साथी।

आप सुन रहे थे गंगा गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम जीवन और साथी के गाए लोकगीत, और अभिनी की आवाज़ में अब सुनिए खेमटा।

0: out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है. पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी. इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया. इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा. लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं. और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है. श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा. उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे. प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है. निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है. इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है.
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही. आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है. श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है. आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं. इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं. पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है. इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है. एक रिपोर्ट.
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव

0: का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।

0: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
0: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
4: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकार तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही

0: दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज का ये कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गाने। आज का कार्यक्रम हम शुरू करें उसके पहले आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आपको पुनः शुभकामनाएं और अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ। और कार्यक्रम में हम आपको पहले बता दें उन फिल्मों के नाम जिनके गीत सुनने के लिए आज आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे। हमारी आज की फिल्में हैं घर गृहस्थी, माई के लाल, सजनवा बैरी भैले हमार और तोहार किरिया। इन्हीं फिल्मों के गीत सुनने के लिए आपको हमें संदेश भेजना है, तो आप अपने संदेश हम तक पहुँचाएँ। और पहला गीत घर गृहस्थी फिल्म का हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ संदेश भी हम ले लेते हैं। और ये संदेश आया है अजय सिन्हा का, जगह का नाम आपने मेंशन नहीं किया है। ये संदेश जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। और अगला संदेश सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य और राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम और प्रतीक केशरी। ये संदेश आया दतरेंगी भाजापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। राम सकल चौधरी चोचकपुर बाजार गाजीपुर से आपका संदेश। ये संदेश आया गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, मास्टर अल कबीर। एक और संदेश लेते हैं, उसके बाद गीत सुनवाएंगे आपको। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गीत सुनिए, उसके बाद बाकी के संदेश पढ़ेंगे।

घर गृहस्थी, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और अगला गीत माई के लाल फिल्म से। और इन दोनों ही गीतों के लिए श्रोताओं ने अपने व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचाए हैं। ये संदेश आया भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। विशाल मिश्रा बंधुआ बाजार माधोपुर इमलिया जौनपुर से। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। ये संदेश आया ग्राम चक फुटही असनाव बाजार भदोई से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव का। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से।

जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। ग्राम बहुवरा पोस्ट दिलदार नगर गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम, दीनानाथ सिंह और किशुन सिंह कुशवाहा। यहीं से हृदय नारायण गुप्ता और छवि नाथ शर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। ये संदेश आया लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। राधे श्याम यादव गाजीपुर से, भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार, सरिता, आशीष, सतीश, पूजा, नीतू, सानवी, रत्तू और नंदलाल का। और ये संदेश आया

ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से। और श्रोताओं सुनिए माइके लाल फिल्म का ये गीत, बाकी के संदेश इस गीत के बाद।

चूमब जो बन जब तोहरा तो पैरन का पायल चमक जही है। पैरन का पायल

अगला गीत सजनवा बैरी भैले हमार फिल्म से, और बहुत सारे संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये संदेश आया सुजीत राय का, भागलपुर बिहार कहलगांव से। अगला संदेश है ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, सोनाली राय, अनु राय, साइना राय। और ये अगला संदेश मुजफ्फरपुर बिहार से, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह। ये संदेश आया गोपालपुर जौनपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और अजीत वर्मा। ये संदेश आया नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, अमित कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार का ये संदेश आया है, और जगह का नाम आपने मेंशन नहीं किया है। संदेश शामिल हुआ बबलू यादव, सुनील यादव, ग्राम रजईपुर पोस्ट ओगापुर भदोई से। अगला संदेश रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एन्द्री ओमनाथ, सारंग शिवांग रोली, अदिति और निर्मला त्रिपाठी। संदेश शामिल कर रहे हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता का ये संदेश है। अगला संदेश आया है वालिदपुर मढ़हा मऊ से, राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भगत यादव। ये संदेश अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा का, पचदेवरा गाजीपुर से। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। ग्राम पश्चिम पट्टी दुर्वासा धाम आजमगढ़ से अंश राय, अनवी राय, रूबी राय आपका संदेश, और यहीं से कालिंदी राय, अनिल राय। ग्राम हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। गोपालपुर जौनपुर से अवधेश तिवारी और शिवांगी। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कृपया रिपीट संदेश कार्यक्रम में न भेजी। और ये संदेश आया है मढ़हा मऊ उत्तर प्रदेश से दीपा यादव, उषा, अनुराग और भारती का।

सजनवा बैरी भैले हमार, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम का जो आखिरी गीत है वो हम आपको सुनवाएंगे तोहार किरिया फिल्म से। कुछ संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, श्रोताओं के नाम पढ़े देते हैं। सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया का ये संदेश। और अगला संदेश है, कुछ श्रोता बार बार रिपीट संदेश कार्यक्रम में भेज रहे हैं। आपसे अनुरोध है कृपया आज के कार्यक्रम में अगर आपने संदेश भेज दिया है तो दोबारा संदेश न भेजें। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी प्रजापति, राहुल प्रजापति कोरौता वाराणसी से और इमरती यादव ग्राम भट्टी पोस्ट सकलडीहा चंदौली से। अगला संदेश, दिलदार नगर से सरफराज अंसारी, इब्रार रायनी, पारसनाथ सिंह और भीष्म सिंह यादव। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निघत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी। संदेश आया भास्कर दुबे का चोचकपुर गाजीपुर से। और श्री किशुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा गाजीपुर से संदेश। ये संदेश है, अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। श्रोताओं, हमने आपको बताया लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं। आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत सारे श्रोताओं ने संदेश में शुभकामनाएं भी भेजी हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

ये संदेश आया राजू चौधरी का ग्राम नगदीलपुर गाजीपुर से। और गाजीपुर से ही ये संदेश अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा और सचिन का।

आज का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ। मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

गाजीपुर से लक्ष्मीकांत पांडे, जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। श्रोताओ, त्योहार क्रिया फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं और ये आज के फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का आखिरी गीत है।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DTS DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स OTT और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा शाम के 5:42 स्टूडियो की घड़ी में हो रही है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म कुली नंबर 1 से, आवाजें कुमार सानू और पूर्णिमा की, शब्द हैं समीर का और संगीत से सवारा है आनंद मिलिंद ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म साथी से। आवाज अनुराधा पौडवाल की, गीतकार नवाब आरजू और संगीत से संवार है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत है फिल्म मिस्टर बेचारा से आवाज कुमार सानू की, गीतकार नवाब आरजू और संगीत से संवारा है अमीन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: कभी कभी कुछ आवाज केवल सुनाई नहीं देती बल्कि पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है।
1: ऐसी ही एक आवाज है रेडियो की, जिसने समय के साथ तकनीक को बदलते देखा लेकिन श्रोताओं के साथ अपना रिश्ता कभी नहीं बदला।
0: कभी समाचार के माध्यम से, कभी गीत संगीत के जरिए और कभी ज्ञान व जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से रेडियो ने समाज को जोड़ने का काम बखूबी किया है
1: और हम स्वयं भी उसी खूबसूरत परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा हैं, जो वर्षों से लोगों तक सूचनाएं, संस्कार और संवेदनाएं पहुंचाती रही है।
0: इन्हीं भावनाओं के साथ मैं हूं नेहा श्रीवास्तव
1: और मैं हूं नेहा हाशमी।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आप सुन रहे हैं युवा दिलों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी

0: दोस्तों, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो हर दौर में अपनी छाप को बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और जब ऐसे किसी माध्यम की बात होती है जिसने देश की अनेक पीढ़ियों को जोड़ा हो, तो रेडियो का नाम सबसे पहले आता है।
0: आज का दिन इसी दृष्टि से विशेष है, क्योंकि इस वर्ष आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रही है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1927 में निजी प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी। इसके बाद 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जिसने देश में संगठित सार्वजनिक रेडियो प्रसारण की मजबूत नींव रखी।
0: दोस्तों, बाद में वर्ष 1957 में 8 जून के ही दिन ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम से आधिकारिक रूप में अपनाया गया। यह नाम आज केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों श्रोताओं के विश्वास और जुड़ाव का प्रतीक बन चुका है।
1: बिल्कुल दोस्तों, एक रोचक तथ्य आपको ये भी बता दें कि आकाशवाणी शब्द का संबंध गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से माना जाता है। बाद में वर्ष 1957 में इस नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और तब से ये करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर आज के डिजिटल युग तक आकाशवाणी ने शिक्षा, कृषि विज्ञान, संस्कृति और साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्व भूमिका निभाई है।
0: एक समय ऐसा भी था जब देश के लाखों परिवारों तक महत्वपूर्ण समाचार और सरकारी सूचनाएं पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय माध्यम रेडियो ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल दोस्तों, आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भाषाई विविधता भी रही है। देश की अनेक भाषाओं और बोलियों में प्रसारण कर इसने भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का कार्य किया है।
0: आज FM, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौर में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और जन सरोकारों के कारण उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है।
1: और हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है कि 9 दशकों की ये यात्रा आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है और नई पीढ़ियों को भी अपने साथ जोड़ रही है। और आज का दिन तो वाकई बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज यानी 8 जून के दिन फाइनली हमारे आकाशवाणी को पूरे 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर आकाशवाणी। इसी तरह से इसकी ये जर्नी हमारे साथ जुड़ी रहे, ये आवाज के दिलों में ये जो रिश्ता है हमारे साथ, ऐसे ही कनेक्टिविटी बनाए रखे, क्यों नहीं। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि आज का दिन इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। हर वर्ष 8 जून को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता का संदेश देता है।
0: दोस्तों, पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग महासागरों से ढका हुआ है। यह न केवल जैव विविधता के सबसे बड़े स्रोत हैं, बल्कि पृथ्वी के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों की वजह से दोस्तों आज महासागरों के सामने गंभीर संकट बनकर आ खड़ा हुआ है।
0: इसलिए यह दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, छोटे छोटे प्रयास जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार महासागरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
0: और यही संदेश विश्व महासागर दिवस हमें देता है, प्रकृति का सम्मान करें, संसाधनों का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।
1: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, अब इतने सारे जानकारियों के बाद आज जैसा कि हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है, तो भाई गाने भी स्पेशल होने वाले हैं। कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए और इनके साथ साथ गानों का भी आनंद लेते रहिए।

0: तो भाई पार्टी का माहौल तो है ही, क्योंकि आज हमारे आकाशवाणी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, तो भाई पार्टी कैसे छूट सकती है, और इसीलिए नॉन स्टॉप गानों की पार्टी तो बनी ही रहेगी। उसके साथ साथ अब आपने ये गीत एंजॉय कर लिया है, तो चलिए पेन और कॉपी के साथ भी रेडी हो जाइए, क्योंकि भर ही आ गई है। अब हम आपको हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को बता दें, पर उससे पहले हमारे कल के विनर्स कौन है और किन्होंने हमें सही जवाब भेजा है, और कल का हमारा प्रश्न क्या था वो भी तो जानना है। तो हमारा कल का प्रश्न था दोस्तों, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के तहत काम करता है, और इसका जो सही उत्तर है वो है रक्षा मंत्रालय। और जिन साथियों ने हमें इसका सही उत्तर भेजा है वो है
1: प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सेमरौल, रवि मौर्य। आप सभी दोस्तों को सही जवाब देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: और भी हमारे जो भी साथी जिन्होंने हमें सही उत्तर भेजा है वो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम सुनते रहें, हमें सही जवाब भेजते रहें और विनर भी बनते रहें। और साथियों चलिए इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रश्न क्या है वो हम जान लेते हैं। तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। इसका सही उत्तर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी youth वाराणसी पर जाकर, या फिर हमारे ईमेल के पते पर यानी youth@vns.gmail.com पर जाकर के फटाफट से भेजिए और बन जाइए हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर। फिर से मैं आपको प्रश्न एक बार बता देती हूँ, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। और आज तो भाई हमारे आकाशवाणी का स्पेशल दिन है, तो आज के दिन तो भाई आपके जवाब आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं कि कौन से साथी हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बनते हैं विनर। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक वार्ता सुन लेते हैं, जिसका विषय है आकाशवाणी के 90 वर्ष, सूचना संस्कृति और संगीत का विश्वसनीय माध्यम। और इसके इसको जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है आदित्य प्रकाश।
2: नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता से परस्नातक कर रहा हूँ। आकाशवाणी के युववाणी की वार्ता में मेरा आज का विषय है आकाशवाणी के 90 वर्ष, सूचना संस्कृति एवं संगीत का विश्वसनीय माध्यम। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और विविधताओं से भरे उपमहाद्वीप में जनसंचार की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य उपकरण रही है। इस यात्रा में आकाशवाणी केवल एक सरकारी प्रसारण संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय समाज की चेतना, उसकी धड़कन, उसकी संस्कृति पहचान का एक जीवंत प्रतीक बनकर उभरा है। पिछले 90 वर्षों में आकाशवाणी ने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्री तटों तक और सुदूर पूर्व के जंगलों से लेकर थार के रेगिस्तान तक प्रत्येक भारत के घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की सुबह में आंखें खोली तब साक्षरता दर अत्यंत कम थी और समाचार पत्रों की पहुंच केवल शहरी प्रबुद्ध वर्ग तक सीमित थी। ऐसे में रेडियो में ही वह एकमात्र माध्यम था जिसने निरक्षरता और भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए देश के सुदूरतम कोने में बैठे व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ा। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य को अपनाकर आकाशवाणी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण, शिक्षा और मनोरंजन को अपना परम लक्ष्य बनाया। 90 वर्ष की इस अटूट यात्रा इस बात का साक्ष्य है कि टेलीविजन के आगमन और डिजिटल मीडिया के विस्फोट के बावजूद रेडियो की प्रासंगिकता और उसकी विश्वसनीयता कभी कम नहीं हुई। आज जब सूचनाओं के बाजार में फेक न्यूज और सनसनीखेज पत्रकारिता का बोलबाला है, आकाशवाणी अपनी सत्यता, निष्पक्षता और गंभीर दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनमानस में सबसे विश्वसनीय माध्यम के रूप में अडिग खड़ा है। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास निजी उद्यमों के इतिहास और औपनिवेशिक सरकार की सतर्कता की एक अत्यंत रोचक कहानी है। भारत में रेडियो के कुछ अनौपचारिक प्रयोग में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब द्वारा शुरू किए गए थे, परंतु भारत में नियमित और व्यावसायिक रेडियो प्रसारण की वास्तविक शुरुआत जून 1936 में हुई। भारतीय व्यवसायी और उत्साही इंजीनियरों के एक समूह ने मिलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना की थी। इस कंपनी ने मुंबई स्टेशन से अपना पहला आधिकारिक प्रसारण शुरू किया। इसके ठीक एक महीने बाद

कलकत्ता स्टेशन की शुरुआत हुई। यह भारत के आधुनिक इतिहास का एक युगांतकारी क्षण था। हालांकि उस समय रेडियो सेट्स बहुत महंगे थे और उन पे भारी लाइसेंस शुल्क लगाया जाता था, जिसके कारण श्रोताओं की संख्या सीमित थी। वित्तीय घाटे और सरकारी सहयोग की कमी के कारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया। इस बंद के बाद जनता और उद्योगपतियों के भारी दबाव के बावजूद ब्रिटिश भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने इस माध्यम की विशाल राजनीतिक और सामाजिक क्षमता को भांपते हुए इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय प्रसारण के इतिहास में वर्ष 1936 एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के एक वरिष्ठ और अत्यंत अनुभवी अधिकारी लियोनेल फील्डन को भारत में प्रसारण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया। फील्डन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वह एक रेडियो को केवल औपनिवेशिक प्रचार का साधन नहीं बल्कि कला एवं संस्कृति का एक उत्कृष्ट माध्यम बनाना चाहते थे। उनके प्रयास से प्रसारण सेवा के ढांचों में व्यापक सुधार किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात महान कवि और विचारक पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो को एक नया भारतीय नाम दिया गया, आकाशवाणी। यह शब्द संस्कृत के आकाश और वाणी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आसमान से आने वाली आवाज। यह नाम इस माध्यम के अमूर्त, सर्वव्यापी और चमत्कारी स्वभाव को पूरी तरीके से व्यक्त करता था और उसके तत्पश्चात इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी एक दूसरे के पूरक बन गए। भले ही ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का कड़ा नियंत्रण और सेंसरशिप लागू था, परंतु भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेडियो की भूमिका अत्यंत रोमांचक और महत्वपूर्ण रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने रेडियो का उपयोग अपने युद्ध प्रचार के लिए शुरू किया, तब भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसके समानांतर एक गुप्त और क्रांतिकारी मार्ग चुना। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की सीमाओं से बाहर जाकर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जर्मनी और बाद में सिंगापुर से प्रसारित होने के बाद इसे रेडियो के माध्यम से नेताजी ने सीधे भारतीय जनता और ब्रिटिश सेना में शामिल होकर भारतीय सैनिक को संबोधित किया। उनके प्रसिद्ध नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद इसी रेडियो तरंगों के माध्यम से भारत के घर घर तक पहुंचे। इन गुप्त और स्वतंत्र रेडियो प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि रेडियो केवल सत्ता का औजार नहीं बल्कि क्रांति की मसाल भी बन सकता है। रेडियो हमेशा से सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग दुनिया के सबसे बड़े समाचार संगठनों में से एक है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो गई, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसका पूरी तरह से भारतीयकरण किया गया। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचारों की मुख्य विशेषता उनकी सत्यता, वस्तुनिष्ठता और तटस्थता रही है। जहां निजी मीडिया अक्सर सनसनीखेज खबरों की ओर आकर्षित करता है, वहीं आकाशवाणी ने हमेशा जिम्मेदार और प्रामाणिक पत्रकारिता के मानदंडों का पालन किया है। एक जमाना था जब ग्रामीण भारत में शाम को ठीक 8:45 बजे पूरा गांव एक ऊंचे स्थान पर रेडियो सेट के चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। दिल्ली से आने वाली देविकी नंद पांडे की गंभीर और प्रभावशाली आवाज यह आकाशवाणी है और आप देविकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। उनकी आवाज पर देश इस कदर भरोसा करता था कि लोग अपनी घड़ियां रेडियो के समाचारों के समय से मिलाया करते थे। इसी तरीके से अंग्रेजी में अशोक वाजपेयी, सुरजीत सेन और बाद के वर्षों में अनेक समाचार वाचकों ने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की। आज आकाशवाणी का समाचार प्रभाग प्रतिदिन सैकड़ों बुलेटिन का प्रसारण करता है। यह समाचार बुलेटिन न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि देश की 22 आधिकारिक भाषाओं और अन्य बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी की का विदेशी सेवा प्रभाग दुनिया के कई देशों में विभिन्न विदेशी भाषाओं का भारत का दृष्टिकोण और समाचार प्रसारित करता है, जो वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने में एक बड़ा माध्यम है। बात करें भारतीय शास्त्रीय एवं सुगम संगीत के संरक्षण में रेडियो के योगदान की, तो आज भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विशेषकर सांस्कृतिक संगीत

0: जीवंत और समृद्ध है, तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय आकाशवाणी को जाता है। स्वतंत्रता के समय राजे राजवाड़ों और रियासतें समाप्त हो रही थी, जो सदियों से संगीतकारों, गायकों और कलाकारों को संरक्षण देती आ रही थी। ऐसे में भारतीय संगीत के सामने एक गहरा संकट पैदा हो गया था। इस नाजुक मोड़ पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री बीवी केसकर ने एक ऐतिहासिक नीति अपनाई और आकाशवाणी के द्वार देश के सभी उत्कृष्ट कलाकारों के लिए खोल दिए। केसकर जी का मानना था कि रेडियो को जनरुचि का परिष्कार करना चाहिए। उन्होंने फिल्मी गानों के अंधाधुन प्रसारण पर कुछ समय के लिए रोक लगाई और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया। उन्होंने आकाशवाणी में कलाकारों के ग्रेडेशन प्रणाली की शुरुआत की, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की भी शुरुआत की। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अमजद अली खान जैसी महान विभूतियों को देश के आम जनमानस तक पहुंचाने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में आकाशवाणी ने अपनी मुख्य संरक्षक की भूमिका निभाई। रेडियो की बात अगर विविध भारती मनोरंजन लोकप्रिय संस्कृति के तौर पे करे तो रेडियो ने शास्त्रीय संगीत पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। तब श्रीलंका के रेडियो सिलोन ने भारतीय फिल्मी गीतों का प्रसारण करके भारतीय श्रोताओं के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अमीन सयानी के प्रसिद्ध कार्यक्रम बिनाका गीतमाला ने रेडियो सिलोन को भारत के घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। इस चुनौती का सामना करने और भारतीय श्रोताओं को स्वदेशी मनोरंजन प्रदान करने के लिए आकाशवाणी ने एक ऐतिहासिक सेवा की शुरुआत की, जिसका नाम था विविध भारती। विविध भारती भारत के प्रसारण इतिहास की सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक सेवा साबित हुई। इसने फिल्मी गीतों, लघु नाटकों, चुटकुलों और साक्षात्कारों के माध्यम से भारतीय मध्यम वर्ग के दैनिक जीवन में अपनी जगह बना ली। हवा महल, सैनिकों के लिए जयमाला, मनचाहे गीत, भूले बिसरे गीत जैसे कार्यक्रमों में लोकप्रियता के सभी कीर्तिमान तोड़ दिए। इन कार्यक्रमों की पटकथा और प्रस्तुति इतनी उच्च कोटि की होती थी कि लोग रेडियो सेट से चिपक जाते थे। विविध भारती पर विज्ञापनों की शुरुआत हुई, जिसने संस्थान के लिए राजस्व प्राप्ति के नए मार्ग खोले। विविध भारती ने केवल भारतीय फिल्म उद्योग के गानों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि इसने हिंदी भाषा के राष्ट्रव्यापी प्रचार प्रसार में भी अनजाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में भी लोगों ने विविध भारती के गानों के माध्यम से हिंदी के शब्दों को सीखा और अपनाया है। रेडियो अब शताब्दी की ओर अग्रसर है। 90 वर्ष की यह ऐतिहासिक गाथा केवल एक तकनीकी माध्यम के विकास की कहानी नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के निर्माण, उसकी सफलताओं, उसकी चुनौतियों और उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक बहुरंगी कोलाज है। आकाशवाणी ने औपनिवेशिक दौर की पाबंदियों से लेकर आज के स्वतंत्र और वैश्विक भारत के निर्माण तक प्रत्यक्ष मोड़ पर देश का साथ निभाया है। यह एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने कभी अपनी मर्यादा, अपनी भाषाई शुद्धता और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का सौदा नहीं किया। आज जब दुनिया सूचनाओं के अतिरिक्त और डिजिटल अलगाव का सामना कर रही है, जहां लोग स्क्रीन से चिपके हुए अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, रेडियो एक आत्मीय साथी की तरह बिना आपकी आंखें थकाए आपके काम के बीच अपनी पृष्ठभूमि में बजता रहता है। वह आपको ज्ञान भी देता है, आपको मनोरंजन भी करता है और आपको अपनी जड़ों से भी जोड़े रखता है। अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे करके आगामी दशक में अपनी शताब्दी की ओर अग्रसर आकाशवाणी आज भी पूरी तरह युवा, प्रासंगिक और ऊर्जावान है। न्यू मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी आकाशवाणी का मूल मंत्र वही रहेगा, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू, उसकी लोक कलाओं की गूंज और देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाली यह शाश्वत आवाज आने वाली सदियों तक भारतीय आकाश में गूंजती रहेगी और कोटि कोटि जनों का मार्गदर्शन करती रहेगी। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, जिसके वार्ताकार थे आदित्य प्रकाश और वार्ता का विषय था आकाशवाणी के 90 वर्ष, सूचना संस्कृति और संगीत का विश्वसनीय माध्यम।

0: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि हमारे यू डायरी में आज नए शब्द कौन कौन से हैं। तो हमारा आज का हिंदी का शब्द है समीकरण, जिसका अर्थ है समानता, बराबरी, संतुलन, समता। और इसका जो वाक्य प्रयोग है वो कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं दोस्तों, कि सरकार ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच अच्छा समीकरण बनाया है।
1: और इसी के साथ साथ हमारा आज का इंग्लिश शब्द है हॉस्टाइल, जिसकी मीनिंग है अनफ्रेंडली, अग्रेसिव और अपोज्ड टुवर्ड्स समवन और समथिंग। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, द क्राउड बिकेम हॉस्टाइल आफ्टर द अनाउंसमेंट।
0: और चलिए अब यू डायरी के शब्दों के बाद आज का दिन इतिहास में कैसा स्पेशल है वो जान लेते हैं। तो भाई आज का दिन इतिहास में बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि भाई 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी आज कंप्लीट हो चुके हैं। और वाकई आज का दिन बहुत ही बड़े सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है हमारे रेडियो जगत में। तो भाई ये बहुत ही बड़ी वाली अचीवमेंट है। उसके साथ साथ दोस्तों बात करें अगर मैं आज के दिन की, तो 1948 में एयर इंडिया ने
1: अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मुंबई से लंदन के लिए शुरू की, जो भारतीय विमानन इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वर्ष 1915 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध कृति गीता रहस्य का प्रकाशन हुआ। आज ही के दिन हिंदी रंगमंच के प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक हबीब तनवीर को भी याद किया जाता है, जिनका निधन 8 जून 2009 को हुआ था। और इसी के साथ साथ बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्म आज ही के दिन हुआ है।
0: बिल्कुल, तो ये थी दोस्तों आज के दिन की ऐतिहासिक सूचनाएं। और चलिए अब जानते हैं आज की रोजगार सूचना हमारी क्या है।
1: दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट ALP पदों के लिए 11,127 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी की है। उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, और साथ साथ संबंधित ट्रेडों में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार इसके अंतिम तारीख यानी 14 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। तो भैया टाइम लिमिटेड रह चुका है, अब 14 जून इसकी आखिरी तारीख है। तो फटाफट से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी rrb.apply.gov.in पर जाइए और इस फॉर्म के लिए यानी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर दीजिए। और अब हमारे कार्यक्रम में भी आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते चलिए एक गीत सुन लेते हैं।

तो भाई भाई वाकई भाई, नाचते रहिए, झूमते रहिए और एंजॉय करते रहिए भाई, हमारे लिए तो और हमारे आकाशवाणी के लिए तो आज वाकई झूमने मस्ती करने का दिन तो है ही, क्योंकि 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी आज कंप्लीट हो गए हैं और सेलिब्रेशन का दिन तो है ही। उसके साथ साथ मैं एक चीज, अब कार्यक्रम चूंकि हमारा खत्म होने के कगार पर बिल्कुल आ गया है और हमारे स्टूडियो की क्लॉक भी अब ये इशारा कर रही है कि हमें टटा वाय कर देना चाहिए, पर उससे पहले जाते जाते एक जरूरी बात जो मैं आपसे

0: जरूर कहना चाहूंगी कि अपने आसपास का जो माहौल है ना, वो क्या है कि साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमारे आसपास का जो माहौल है वो साफ सुथरा होता है तो एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी हमें फील करने को मिलती है, क्यों नहीं? हाँ, तुम क्या कहती हो?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ज़्यादा सफाई, मतलब सफाई रखना ना बहुत ज़रूरी है, जिससे बीमारी भी कम फैलेगी और हम स्वच्छता से रह भी सकेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भाई स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराएंगे, तभी हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा होगा, तभी हम अपने आसपास लोगों को भी खुश रख पाएंगे और खुद को भी खुश रख पाएंगे। तो ऐसे में क्या करिए कि अपने आसपास भाई कचरा, ये जो हम एकदम भूल भटक के कहीं पे भी कुछ खाते पीते हैं, कोई भी कुरकुरे का पैकेट है, कुछ भी है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो बिना सोचे समझे उसे जिस स्थान पर उसके जो वेस्ट को डालना चाहिए वो नहीं डालते, बल्कि उसे कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं। तो यूज तो करिए, बट उसके साथ उसको थ्रो कहाँ करना है, इसका भी जो है दिमाग में ख्याल रखिए। खैर, अपना ख्याल भी रखते रहिए और अपने आसपास का भी ख्याल रखते रहिए। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, युवाणी सुनते रहिए, आज के ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं नेहा,
1: और मैं नेहा।
0: दोनों नेहा का नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: भोजपुरी समाचारों का कृपया करें प्रतीक्षा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबन के हित में सरकार के 12 साल के विकास जतरा के रेखांकित कैले हम है। श्री मोदी आज कहले कि यह दौरान देश कई गो बदलावन का साक्षी बनल आ गरीब कल्याण और वंचित वर्ग यह बदलावन के केंद्र बिंदु में रहल। वहां के कहले कि अंत्योदय हमेशा से सरकार बदे प्रेरणा स्रोत रहल आ यह कोशिश कैल गईल बा कि विकास का लाभ दशकन से पाछे छूट गई लोगिन ले पहुंचे।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री कहने की गरीब कल्याण यात्रा मनई के सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपना के साकार कैले का सामूहिक अभियान बन गईल बा।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन, आखिरी व्यक्ति तक।

0: किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के स्थापना से जुड़ल कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। इस मौका पर आयोजित समारोह के संबोधित करत वहां के कहने की मौसम विभाग की ओर से जवन भी कार्यक्रम प्रदेश में लागू हुई ओमे राज्य सरकार जरूरत के हिसाब से पुरहर मदद बदे तैयार हो। मुख्यमंत्री उम्मीद जतौलन की मेट्रोलॉजी के रीजनल सेंटर से प्रदेश के ढेरे लाभ मिली। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल भेल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के आयोजित होके वाले नीट UG पुनर्परीक्षा बदे परीक्षा सहरन का सूचना जारी कर देले हो। एगो रिपोर्ट।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने स्पष्ट किया है परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक का समकक्ष पदन बदे भर्ती परीक्षा आज उसे 2 पाली में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच शुरू हो गई। एगो रिपोर्ट।
4: आगामी 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर यह 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हो रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनों का संचालन कर रहा है। भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से बस के किराए में भी 50% की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी का भरोसा आज जनसेवा के आज गौरवशाली 90 बरिस पूरा हो रहा हो। बरिस 1936 में अजुए के दिन ने इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिहल गए रहे। एगो रिपोर्ट।
5: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुँचा रहा है। अमन यादव के साथ तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गोरखपुर के सतही प्रदेश के कुछ और जिलन में आज कहीं कहीं बरखा भइले से कुछ देर खातिर गर्मी से राहत मिलल। हालांकि बरखा के बाद शुरू भइल उमस के नाते लोगिन के परेशानी का सामना करे के पड़ रहल हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
6: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गिटार वादन, कलाकार होंगे निर्मल सैनी। कार्यक्रम कवि गोष्ठी आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। प्रतिभागी कवि होंगे मधुलिका राय, डॉक्टर अवरार हसन सिद्दीकी, तरुण कुमार और यूनुस अंसारी। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 8वीं कड़ी का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:10 पर। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी चित्रा सिंह। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:31 पर। वाचन होगा आशुतोष और सना सलीम का। प्रस्तुति होगी अशोक कुमार पांडे की। शाम 6 बजकर

30 मिनट पर कार्यक्रम कृषि जगत में पीलिया रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पर डॉक्टर विवेक राय से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा किसान भाई राम जियावन और साथी के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 9 जून सन 2026 दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 9:30 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31

0: अब सुनिए कल यानी दिनांक 9 जून सन 2026 दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 9:30 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर आरपी शास्त्री का वायलिन वादन, और दोपहर 12:45 पर उप शास्त्रीय गायन सुनेंगे, कलाकार होंगी मुराद बानो। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह, और रात्रि 8 कलाकार होंगे उषा टंडन और राहत अली। कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय होगा रात्रि 10। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला की 9वीं कड़ी का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:10 पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनिएगा बातचीत, विषय होगा असिंचित दशा में खेती की उन्नत तकनीक। साथ ही किसान भाई सतीश चंद्र यादव व साथी के गाय लोकगीत भी सुन सकेंगे। इन्हीं के गाय लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मूंगफली की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना का समय होगा सुबह 6:10 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु आप सुनेंगे सुबह 6:30 पर। सुबह 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मधुमेह कारण लक्षण और उपाय विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर। व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा सुबह 11:00। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:00। दिन में 1:15 पर महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया में कामकाजी महिलाएं और पारिवारिक संतुलन विषय पर सुरभि जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा महिलाएं गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगी। कार्यक्रम सुहाने ताराने दिन में 2:30 पर, झंकार सुबह 10:00, मधुरिमा सुबह 8:45 पर आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम धरती के गीत का प्रसारण समय होगा शाम 5:00। शाम 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, और साथ ही युवा साथी गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत पहले ये संदेश।
1: गिनती देश किसान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए फिल्म गीत गाता चल से, आवाज जसपाल सिंह की, गीत व संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मालिक से, आवाज महेंद्र कपूर की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिमबंगालराज्ये आयुष्मान् प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन CBSE बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता संदर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेषु शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणम्, स्वच्छ भारत अभियानम्, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम्, अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुं

0: अपि आसीत्। निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्वस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्याम राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् CBSE बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायाम् आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयम् कार्यक्रमः अंतर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अपराह्ने नवदिल्ली नगरे भारत सभा अभवत्। अस्यां सभायां विपक्षस्य विभिन्नाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी इत्यस्य वरिष्ठः नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा ममता बनर्जी, वरिष्ठः नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, NCP SP नेता सुप्रिया सूले च आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे उक्तवान् यत् सभायां 25 राजनैतिक दलानि उपस्थितानि आसन्। सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता, सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारत देशः पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तवान्। विदेश मंत्रालयेन उक्तं यत् एते घटनाक्रमाः अन्ताराष्ट्रीय समुदायस्य कृते अत्यन्तं चिन्ताजनकाः सन्ति। शिला तैल प्राकृतिक इंधन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालयेन उक्तं यत् पश्चिम एशियायां वर्तमान परिस्थितेः अपि देशे शिला रस तैलस्य गृह्य इंधनस्य LPG गैस इत्यस्य तथा प्राकृतिक इंधनस्य आपूर्तिः स्थिरा वर्तते। मंत्रालयस्य अनुसारेण पेट्रोल, शिला तैल, डीजल, पीड ज्वाल तैल, LPG द्रवीकृत शिला तैल इंधन इत्यादीनां पर्याप्तः भण्डारः देशे उपलब्धः वर्तते। ईरान देशे भारतीय दूतावासस्य परामर्शः ईरान स्थितेन भारतीय दूतावासेन क्षेत्रे वर्तमान तनाव पूर्ण स्थितेः कारणात् भारतीय नागरिकेभ्यः ईरान यात्रां परिहर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। तत्र वर्तमानाः भारतीय नागरिकाः उपलब्ध यान साधनैः देशत्यागं कर्तुम् अपि सूचिताः। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। प्रसारयति भारतस्य स्वरं विश्वस्मिन्। आकाशवाणी अद्य स्वस्य स्थापनायाः 90 वर्ष पूर्तिम् उत्साहेन आचरति।

0: पंचो राम राम
1: रामेश्वर भैया।
0: हाँ सत्तू भैया।
1: अरे देखा तो मने मने मुस्कुरा तड़ा का बात बा हो
0: भैया, सवेरे ही से गीत गौनाई काने में सुनात बा। आ देखा कहल गल बा कि जौनो चीज पुरान जस होला ना,
1: हाँ,
0: तस तस ओकर गमक खुशबू ओकर महक और खुशबूदार हो जाला और गमकदार हो जाला और रंग ओकर और चढ़त जाला।
1: ई कोनी खुशी के बारे में बताओ तेरा भैया, तने हमरो के बताओ।
0: मतलब बुझला कि बुझाई
1: नहीं, हम बुझा तो नहीं लेकिन हम चाहत नहीं कि तू ही बताओ।
0: देखे आज आकाशवाणी परिवार अपन 90 साल पुराना जोन इतिहास हो के आनंदित रूप में जश्न के रूप में मनावत है। आज हमन के एक तरीके से 90 वर्ष हो गल ई
1: आकाशवाणी
0: सफर तय करत। लगभग ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 के एक इनाम मिले रहे। इससे पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एकर नाम रहे है ना, लेकिन 8 जून 1936 के एक ऑल इंडिया रेडियो का नाम देवल गल। और फिर आगे ओके समय बढ़ले के बाद फिर आकाशवाणी भी नाम देवल गल, लेकिन जौने समय ऑल इंडिया रेडियो कहल गल वही का आज 90 वर्ष पूरा भला। तो यही से पूरा एकर विस्तार भी लगभग 951 केंद्र से संचालित होला और लगभग लगभग

0: लगभग 100 मान ला, हालांकि कहे वाले लिखा पढ़ी में अपन 98-99% कहा ना, लेकिन लगभग लगभग पूरे देश के हर कोने में भी आई आकाशवाणी पहुंचा
1: और हर कोने में ही आपन सांस्कृतिक या कहल जाओ कि आपन एगो जोन पूर्ण छवि होला,
0: विरासत,
1: अब अपन विरासत, अपने देश के विरासत, अपने देश की संपत्ति का हर हाल में देखभाल, या कहल जाओ कि जोन आपन लोक संगीत है या हमनी का संस्कृति का जोन बात कहनी है भैया,
0: ओकर साथे साथे सतु भैया ज्ञान,
1: हाँ
0: विज्ञान, आ भैया हो सूचना, अब मनोरंजन,
1: बिल्कुल सब करावत हुए।
0: हाँ।
1: ये जान ल कि रमेश्वर भैया सब आदमी के दिलो दिमाग में ई घर बनैलस
0: भैया, तब न कहल जाला जन जन का वाणी
1: आकाशवाणी। और रमेश्वर भैया,
0: हाँ।
1: देखा हमने का तो भाई एजा रेडियो के माध्यम से बोलत है जा, लेकिन जवन भैया लोग रेडियो पर कहे या बोले या सूचना देवे या कहल जाओ कि वैज्ञानिक भैया लोग विज्ञान के बारे में बतावे आवेला लोग ना, देख जान ला कि भैया उ लोग भी अपने खुशी का इजहार हमनी से कितना करे लोग, इतना देखते सुनत हुआ और भैया लोग भी देखत सुनत हुआ कि कितना उन लोगों में उत्साहित रहेला कि हम का का बता दी अपने सुने वाला भैया लोग के जे कि हमारी जानकारी को उपयोग कर सके
0: लोग, एक लाभ ले ले
1: बिल्कुल। और इतने इतने नहीं, एक और चीज कहब कि देखा ये गो ना जो हमनी का अपन ये अपन अगल बगल का परंपरा है, जो हमनी के अगले बगल आकाशवाणी वाराणसी की अगल बगल का जो पारंपरिक गीत संगीत है या बोल चाल है, ये सब के भी एकदम बढ़िया से अपने में पिरो के
0: बिल्कुल बिल्कुल के प्रस्तुत कर जाला
1: एकदम एकदम।
0: सत्तू भी आकाशवाणी के जो सबसे बड़ी महानता है कि एक रिले केंद्र से ही ऐसा नहीं कि जो दक्षिण भारत में संगीत चला था वह उत्तर भारत में चला था, जो असम में में संगीत चला था वह गुजरात महाराष्ट्र में चला था, नहीं क्षेत्रीय भाषा का, क्षेत्रीय संगीत का, क्षेत्रीय परंपरागत जो अपन विरासत है ओकर जो एक तरीके से आकाशवाणी के माध्यम से ओ क्षेत्र के लोगन के सुने के मिला ला, यही से एकर जन जन को वाणी आकाशवाणी
1: कह जाला विविधता में एकता है कि हर हर सबको मनोरंजन करते हुए सबके एक साथ जोड़ते हुए अपन महान अपन रेडियो अपन महान आकाशवाणी
0: अपन सफर तय करत
1: था, अपन सफर तय करत था और अपन आज 90 साल पूर्ण करत था।
0: आ एकर भैया कहनी भी है सर्वजन हिताय, सर्वजन सिखावे, सबकर हित हो, सबकर विकास हो, और आकाशवाणी का जो असली उद्देश्य है मन पहले सुनल जा ओके लोग बतावे कि देखें एकर पहला उद्देश्य है सूचना देना, तो भैया सूचना तो मिलबे करला, ओकरे बाद होला भैया अधिक से अधिक जानकारी लोगन के हो, आ तीसरा भैया मनोरंजन। जब ये कुल अगर हो जाला तो 24 घंटा बीते में देरी नहीं लगत भैया, हम उस दिन देखले भी है भैया कि सवेर भोर उठत रेडियो चलल वो जब भैया अपन बजाला संकेत धुन, अब भैया हो रात 10-11 बजे तक अपन खटिया मचिया पटिया पर लेके लोग बैठल हो।
1: रमेश्वर भैया देखा हमनी का तो खेती किसानी करे वाला मनई है जा, और ये जानला कि रेडियो से सवेरे उठते चाहे वो खेती के बात हो चाहे संझा के अपन कृषि जगत कार्यक्रम होके, ये जानला कि हमनी को खेती बारी में बहुत मददगार है। और खेती के माध्यम से एक और बात कहो कि जोन आई पर्यावरण का एगो शब्द चलत है ना,
0: बिल्कुल के ख्याल रखे के बाद
1: 2-3 दिन पहले पर्यावरण दिवस मनावल गेल है
0: 5 जून के भी है,
1: तो ये जानला कि हमनी के खेती बारी से भी पर्यावरण के शुद्ध रूप रखे में बहुत बड़ा योगदान है।
0: मोटा मोटा सत्तू भैया बता दही कि देखें अभी जोन 5 जून के हमन पर्यावरण मनौली है जाए विश्व पर्यावरण दिवस, ओकर असली भैया यह उद्देश्य है कि वृक्ष धरा का भूषण है, यह है असली आभूषण है, आज के जितना जल्दी समझ ले भैया तो अपने पंच भैया लोगों से निहोरा करब की खेती बाड़ी में जो पर्यावरण का प्रभाव है एके भैया बढ़ावे के बाद दुष्प्रभाव के कम करे के बाद निहोरा हाथ जोड़िया यह बा कि जितना हो सके जैविक खाद की तरफ भैया पहल करल जाए और जितना हो सके भैया रासायनिक खाद का प्रयोग अपने खेती बारी में कम से कम कर
1: एकदम एकदम। और जोन हमनी का एकदम ले आके बोरा का बोरा खेते में अपने ठेल देते हैं
0: जना, ना ना भैया उसे बचे के बाद भैया कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, नीम खाद, जितना भैया हो एक तरीके से एक जमाना रहे हरित क्रांति का जब अनाज कम रहे सत्य भैया, जब विदेश से मंगावल जाए गेहूं चाउर तब इतना अंधाधुन प्रयोग भल तब ठीक बा, लेकिन अब भैया खेत बा, खरिहान बा, संसाधन बा, अब भैया जैविक खाद के रूप में बहुत वैरायटी बा, हम तो भैया पंच भैया लोगों से हथेड़िया नहीं हो रहा यह करब कि भैया हो तनी सा हरा खाद के तरफ आगे
1: एकदम। और उसे जो अनाज हरी खाद से या जैविक खाद के जो बात करत रहा न रमेश भाई, उसे जो अनाज है ना एकदम शुद्ध रूप से अपने कहल जाओ कि अपने स्वास्थ्य के भी बढ़िया रखत।

0: हाँ
1: अपनी तन मन के भी रखत है, बाल बच्चा घर में एकदम निरोग रहते हुआ।
0: बिल्कुल
1: और ये जान लो कि उसे कोनो मैंने डॉक्टर भैया लोग भी कहे ना कि
0: हाँ
1: उसे कोनो रोग ना हुई।
0: बात सब तू भैया, जब रोग का बात कहला ना तो जैसे पेड़ पौधा हवा ना हो ऐसे ही मनई लोगन के भी रोग हो जाला, आ ऐसे ही रोग में एक रोग बा भैया ज्वाइंडिस जगह पीलिया कहल जाला। ये भैया एकर रोग कहा कैसे हो जाला, एकर का कारण लक्षण और उपचार है, आज एकर बात बत कही हुई लेकिन ऐसे पहले सुन लेवल जावा सनेस।
1: बिल्कुल सुन लिया जाए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: डॉक्टर विवेक कुमार राय भैया, आप चिकित्सक हो, आपका हमारे पंचेटी में स्वागत बा। जैसन कि मौसम चलत हो
2: जी,
1: उतार चढ़ाव वाला, और खास करके तापमान इतना ज्यादा देखा में आवल हो, और घरे से निकलता लोग चेता देते हुए कि भाई देखा तैसा सावधानी से रहा, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। तो एक जो पीलिया बीमारी होले डॉक्टर साहब, तो का ये मौसम से होकर कुछ विशेष संबंध हो कि वो कभी भी हो सकले?
2: नमस्कार, देखिए मैं आपको बताऊं, पीलिया का किसी खास मौसम से कोई बहुत लेना देना नहीं है। यह व्यक्तिगत साफ सफाई पे निर्भर करता है।
1: अच्छा,
2: किसी भी मौसम में पीलिया की बीमारी हो सकती है, नवजात से लेके वयस्कों तक में।
1: माने मौसम से बहुत ज्यादा एकर लेना देना नहीं है, कभी भी हो सके।
2: जी, कभी
1: जब भी सफाई में थोड़ी कमी आ जाए।
2: जी जी,
1: अच्छा,
2: कभी भी हो सकती है।
1: तो ये जो ना बताऊना है कि नवजात से लेकर

0: करके जो ना वृद्ध तक भी हो सकल है,
1: जी
0: तो के मतलब संभावना ज्यादा रहले हुए कहे।
1: देखिए, पीलिया कोई बीमारी नहीं है,
0: हाँ
1: पीलिया रोग नहीं है, पीलिया एक लक्षण है।
0: अच्छा।
1: इसको समझने की जरूरत है विस्तार से। मैं थोड़ा विस्तार से बताना
0: जी जी
1: चाहूंगा।
0: बताओ।
1: यह तीन तरह से होता है। लीवर से संबंधित ये है, बीमारी ही कहते हैं लोग इसको आम भाषा में। यह तीन कंडीशन में होती है। एक इसकी जो प्रमुख कंडीशन है वो प्री हिपैटिक, लीवर को हिपैटिक ऑर्गन बोलते हैं, प्री हिपैटिक कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। तो किसी भी अन्य कारण से वो जब जरूरत से ज्यादा टूटने लगती हैं, मृत होने लगती हैं, और हमारा लीवर उसको संभाल नहीं पाता है, तो इस अवस्था को प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं। दूसरा होता है हिपैटिक जॉन्डिस। किसी वजह से लीवर बीमार हो गया तो उस स्थिति में भी तो बिलरुबिन बनता रहता है, लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। और एक आज जो भारत में आम है वो है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ये होता क्या है कि जो हमारी बाइल डक्ट होती है, जो लीवर से एक नली निकलती है और पित्ताशय जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं उससे एक नली निकलती है, और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज उससे एक नली निकलती है, तीनों एक जगह मिलती हैं, उसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। उसमें जब अवरोध आ जाता है और ये बिलिरुबिन ड्रेन नहीं हो पाता, उसका बहाव रुक जाता है, तब जो है ये पीलिया होता है, उसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को थोड़ा डिटेल में समझने की आवश्यकता है।
0: अच्छा। तो ये कारण का होला इकर जो ना
1: देखिए
0: बतावत हुए कि जो ना बिलोबिन जो
1: जी,
0: ना ही निकल
1: प्री
0: पावत।
1: हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि जैसे कहीं आपको चोट लग गई या कोई ट्रामा हो गया तो खून का बड़ा थक्का सुपरफिशियल यानी ऊपर या अंदर शरीर में कहीं बना हुआ है, तो उसकी कोशिकाएं तो मृत हो जाती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके शरीर में रक्त वाहिकाओं में एब्जॉर्ब होता है, शोषित होता है, तो बिलरुबिन का लेवल तो बढ़ ही जाएगा, तो इस वजह से पीलिया हो जाती है। दूसरा खासकर महिलाओं में देखने को मिलता है, पुरुषों में भी होता है, हेमोलिटिक एनीमिया एक कॉज होता है। मतलब 120 दिन की साइकिल है उसकी लाल रक्त कोशिकाओं की, लेकिन पहले ही वो मृत हो जाती हैं, तो इस मात्रा में मृत होने के कारण जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो ये प्री हेपेटिक वाले कंडीशन होती है। अब दूसरा जो हमने आपको हिपैटिक बताया ये जरा विस्तार है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हेपेटाइटिस हो गया आपको, किसी वजह से बाहरी रूप से आप संक्रमित हो गए या बचपन से ही है आपको पता नहीं है, इसके कई प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई और अन्य वायरल जनित बीमारियां। तो इससे लीवर बीमार हो जाता है हमारा और बिलरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता तो पीलिया हो जाता है। और इसमें जैसे कोई वंशानुगत रोग हो उसकी वजह से भी पीलिया हो सकता है, शराब पीने की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है उससे पीलिया हो सकता है, और कुछ दवाएं जो हमारी माताएं एस्ट्रोजन वगैरह की गोलियां लेती हैं, या पुरुषों में जो बीमार होने पे पेंसिलिन एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं या पैरासीटामॉल का अधिक सेवन करते हैं, उससे लीवर टॉक्सिसिटी मतलब बढ़ जाती है, तो पीलिया हो सकता है,
0: माने मुख्य रूप से इजोन हो लीवर से संबंधित बीमारी
1: लीवर
0: हो।
1: से संबंधित बीमारी। लीवर इसके लिए मुख्य अंग है। तीसरा जो पोस्ट हिपैटिक है उसमें क्या होता है, आजकल हमारे भारत में खासकर गंगेटिक बेल्ट में पित्त की थैली में पथरी एक आम समस्या है।
0: हाँ
1: अगर इसका समुचित उपचार न किया गया तो ये जाके बाइल डक्ट को जाम कर देता है, तो
0: अच्छा।
1: बिलरुबिन का प्रवाह ही बाधित हो जाता है, तो
0: जब बाहर निकल जाए चाहिए तो शरीर में इकट्ठा हो
1: इकट्ठा
0: जाए।
1: होने लगता है, तो ये हमारी आंखों की जो पुतली है स्क्लेरा सफेद हिस्सा और स्किन में सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह में ये दिखने लगता है। इसमें हल्दी जैसा पेशाब होता है, तेजी से बुखार आता है ठंड देकर, और सुस्ती बनी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है, वजन घटने लगता है, भूख नहीं लगती है, और मल का भी जो रंग है वो हल्का भूरे रंग का होने लगता है, और अगर लंबे समय तक इलाज नहीं किया गया तो विभिन्न परिस्थितियों में मौत भी हो जाती है।
0: ये लक्षण आप जो बताओ तो शुरुआती लक्षण हो कि हो गई लेके बाद मतलब गंभीर रूप ले पर हो।
1: शुरुआती लक्षण में तो देखिए केवल आप

0: स्किन का रंग देखने से और आंखों की पुतली देखने से ये पता चलता है।
1: अच्छा
0: गंभीर परिणाम आपको पैथोलॉजी की रिपोर्ट में दिखेगा, जब जांच कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका बिलिरुबिन का लेवल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बढ़ा रहता है, लीवर से निकलने वाले जो एंजाइम है SGOT SGPT उसकी मात्रा बढ़ी रहती है, और अगर ध्यान न दिया गया तो धीरे धीरे संक्रमण बढ़ने लगता है, पेट वगैरह में दर्द होने लगेगा और स्किन में खुजली होने लगेगी, ये सब लक्षण गंभीर स्थिति में देखने को मिलते हैं।
1: तो ऐसा लक्षण अयले पर का करे चाहिए उन्हें?
0: सबसे पहले अपने चिकित्सक से संपर्क करें, खुद से दवा न लें।
1: अच्छा
0: इस बीमारी, मैंने बताया ना कि पीलिया बीमारी नहीं लक्षण है, उस लक्षण को पहचानना होगा कि इसका मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, और उसी के हिसाब से चिकित्सक प्रबंधन करते हैं और उसका इलाज करते हैं। आमतौर पे पीलिया का कोई इलाज नहीं होता है स्पेसिफिक, लक्षण जिसकी वजह से पीलिया हुआ है उसी को दूर किया जाता है, उस कारण को, और मरीज स्वस्थ हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब एक बात रह गई, भूल गई,
0: जी
1: जॉनसन की आप कहना है कि साफ सफाई के कमी से भी होला, तो साफ सफाई से का मतलब हो? ना नहले धोले से या हाथ के
0: नहीं,
1: अगर
0: मैं बता रहा हूं
1: गंदगी से?
0: इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई हेपेटाइटिस से ग्रसित हो गया, तो जैसे पति पत्नी है दोनों में से किसी एक को हो गया, तो
1: अच्छा
0: उनको आपस में सुरक्षित संपर्क करना चाहिए, जैसा कि HIV के केस में होता है।
1: अच्छा
0: और किसी निडल से अगर किसी को इंजेक्शन लगा है तो इस बात का आप ध्यान दें कि वो निडल दोबारा प्रयोग में न आए। तीसरा, कहीं किसी रफ सरफेस पे आप हाथ रख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो हाथ को नियमित अंतराल पे धोते
1: धोते
0: रहें। और शराब अगर मदिरा का सेवन करता है आदमी तो उसको एकदम लिमिट में इंटेक करे, कोशिश तो ये करना चाहिए कि छोड़ ही दें, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बहुत सीमित उसमें वो करें, और एक स्वस्थ वजन को मेंटेन करें और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको नियंत्रित रखें। ये सब चीजों का बचाव करके आदमी स्वस्थ रह सकता है, पीलिया से बच सकता है।
1: तो का डॉक्टर साहब मन कुछ संक्रामक वाला लक्षण भी होला, जैसे केहू के भयल हो तो आसपास अगर ओकरे केहू रहत हो, देखभाल करत हो, सेवा करत हो, तो का ओके भी हो सकल? ऐसा भी हो?
0: नहीं,
1: नहीं।
0: पीलिया इस तरह से नहीं फैलता, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हेपेटाइटिस से ग्रसित पीलिया है और उसका संपर्क इस तरह से पति पत्नी का है या कोई निडल के थ्रू, तो ही ये फैल सकता है, ऐसे आसपास में रहने से नहीं फैलता है।
1: जैसे कभी कभी कहा जाला कि जैसे एक का ब्लेड से दूजे ने दाढ़ी बना लेना, क्योंकि कटल
0: जी तो
1: थोड़ा बहुत छिल
0: वही वही
1: जाता
0: बात हुई ना,
1: है।
0: जब मैं कह रहा हूं कि निडिल, एक निडिल यूज किया हुआ दूसरे पर नहीं कर सकते, तो वही बात आ गई, उसी तरह आप एक ब्लेड भी दूसरे पर यूज नहीं कर सकते।
1: तो एकरे बदे का कोनो जांच कर जाले, जैसे पता चला कि
0: जी
1: हाँ जल
0: जी
1: पीलिया हो गल हो?
0: इसके लिए आपको दो जांचें करानी होती हैं, एक रेडियो डायग्नोस्टिक जांच होती है जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी पेट की कराते हैं और सीटी स्कैन पेट का होता है, और पैथोलॉजी की जांच में आप LFT
1: अच्छा
0: लीवर फंक्शन टेस्ट
1: हाँ।
0: करा के इसको जांच सकते हैं।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब ये जांच का महंग होले?
0: नहीं, ये आम लोगों की पहुंच में है, अल्ट्रासोनोग्राफी 700 से 800 रुपए की जांच है, LFT 200-250 रुपए, सामान्य सरकारी अस्पतालों में हो जाती है ये जांच।
1: तो डॉक्टर साहब पहले तो कोशिश यह रही कि भाई हुए ना पावे के प्रति सतर्क हो जाए, आपके बात सुनत हुई है हमारे किसान भैया लोग, बाकी तो अगर हो जाता हो तो एक उपचार कैसे करो? दवाई लंबी चले ले कि मतलब हो जाए खाली
0: देखिए,
1: पीला
0: अगर
1: शरीर जैसे?
0: हेपेटाइटिस से ग्रसित पीलिया है तो उसका उपचार लंबा चलेगा, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों को समय समय पर टीकाकरण करवा लें हेपेटाइटिस का, ताकि भविष्य में सुदूर इनको ये बीमारी न लगे, और अगर हो गया है तो सामान्य तरीके से अगर हुआ है जैसा मैंने बताया तो उसको कुछ दिनों में ठीक किया जा सकता है,
1: अच्छा
0: लेकिन अगर हेपेटाइटिस से ग्रसित हो तो उसमें लंबा वक्त लगेगा ठीक होने में। जी
1: अच्छा तो सावधानी का बर्तन डॉक्टर साहब का खाए पिए में रहे में का सावधानी बरतन?
0: देखिए, बाहर का तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन न करें, और किसी भी वजह से कंटमिनेटेड जो संक्रमित सुई या ब्लेड का इस्तेमाल न करें, यह जान के चलें कि अपनी सुरक्षा ही बचाव है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वजन को संतुलित रखें, कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना खाएं, बैड कोलेस्ट्रॉल न लें, बाहर का जो जंक फूड वगैरह होता है उसको न लें, घर का बना हुआ खाना खाएं, स्वच्छ पानी पिएं और खुले वातावरण में रहें, इन सब चीजों का ध्यान रख के हम पीलिया से बच सकते हैं किसी भी मौसम में।

0: डॉक्टर साहब, हमारे गांव में जैसा कि लोग कहे ना कि पीलिया हो जाए तो दाल में जो है हरदी मत डाला या कड़ुआ तेल का प्रयोग मत करा, बंद कर देवे के चाहिए, इमर कितनी सच्चाई है?
1: देखिए, तेल भी तो कोलेस्ट्रॉल का ही रूप है। आजकल बाजार में जो हर्बल फूड बिक रहा है कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, इन सब चीजों को बिल्कुल सेवन न करें, हर्बल प्रोडक्ट से बचें। यह भी एक प्रिकॉशन, एक गाइडलाइन आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि इन हर्बल प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें, यह सब भी एक कारण हो सकता है पीलिया होने का। तो हमेशा अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, साल में 2 बार जरूर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं, इससे एक लंबा जीवन हम लोग जी सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और हमारे के गांव में देखा में आवले कि लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाना और उसे देखल जाला कि कुछ होना है, शायद आराम भी होला, तो इमर कितनी सच्चाई हो?
1: यह एक मानसिक वहम है, विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता है।
0: अच्छा।
1: अंत में परेशान होने के बाद उसी हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ती है जिस जहां हम पहले जा सकते थे। इन सब चीजों में न रहें, समुचित जो इलाज है वो आपका चिकित्सक ही करेगा, मूल कारण को जान के कि पीलिया क्यों हुआ। हमेशा अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें।
0: तो इस सब में करिए तो रोग जो हो घटे के बजाय और बढ़ भी सकला, तो
1: जी
0: डॉक्टर साहब का ये प्राण घातक भी होला?
1: जी अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसके वजह से शरीर में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगते हैं
0: जी।
1: और शरीर के सारे अंग एक एक करके फेल होने लगते हैं, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
0: अच्छा, इतना गंभीर हो?
1: जी
0: एक बहुत से भैया लोग देखा हल्के में लेना कि अरे पीलिया हो गल हो चलाई तो ठीक है हो जाए, तो इमन का आराम का भी जरूरत पड़े ले,
1: जी
0: काम धाम न करे के
1: जब
0: चाहिए?
1: बीमारी बढ़ गई है तब आपको दवाएं लेनी चाहिए और समुचित आराम करना चाहिए। बाहर किसी भी एक्सपोजर में नहीं जाना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह से
0: माने खेती किसानी का काम नहीं कर
1: नहीं
0: सकेंगे?
1: कर सकते, मेहनत का कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही सुस्ती लगी रहती है और स्किन में खुजली होती है, तो अगर बाहर निकलेंगे तो ये चीजें और बढ़ेंगी।
0: माने दवा के साथ साथ आराम की भी जरूरत
1: आराम
0: इमन
1: की भी
0: होला।
1: पर्याप्त जरूरत है और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, तरल पदार्थ लेते रहें और चिकित्सकीय सलाह का पालन करें,
0: और जितना अधिक से अधिक सावधानी रखें उतने जल्दी जो है उनका रोग
1: सुधार
0: जो है
1: होगा
0: सुधार
1: स्वास्थ्य
0: होगा।
1: में।
0: जी,
1: जी
0: तो डॉक्टर विवेक कुमार राय भैया, आप हमारे पंचायती में ही ना और इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे श्रोता भैया लोगन बदे कि पीलिया रोग जो है का कारण हो, का लक्षण दिखाई पड़ला, उपचार का करें, का सावधानी रखें, ये जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीलिया रोग कारण लक्षण और एकर बचाव ए विषय पर डॉक्टर विवेक राय और सुधीर कुमार श्रीवास्तव को ही बत कही रहल भैया,
1: दिखल जा धन्यवाद। अझूरे झूर
2: एकदम नहीं झूरे झूर ना रहल जी,
1: तो मन
2: राम
1: मसान।
2: जी आवन और उनके साथी लोगन की आवाज में एक खेमटा गीत है, आवाज सुनल जा, भैया लोगन के भी सुनवावल जा।
1: सुनल जा।

0: सत्तु भैया
1: हाँ भैया
0: राम जी और भैया उनकर संघाती लोग देखना खेमटा विधा में करुणा मन मनसायन एक बाद देखा घड़ी का सुई तो इशारा करते हैं लेकिन चला चला का कहत हो।
1: भाई कल के कार्यक्रम के बारे में बता दिया जाए तो बिहाने जीवन 6:05 पर कार्यक्रम होला ना
0: हाँ
1: खेती की बातें, ओमे मूंगफली का खेती कैसे करे के है ये विषय पर जानकारी दिए दिनेश कुमार सिंह।
0: कल संध्या के 6:30 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में यही कार्यक्रम में बातचीत हुई असिंचित दशा में खेती का उन्नत तकनीक कैसे हो सकला जानकारी दी है डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह भैया। बात बात कही करी है रामकृष्ण मिश्रा जी। देखा घड़ी का सुई यह कहा था कि चला चले के लेकिन उससे पहले जो जरूरी जरूरी बात है कि देखा अब मानसून आवही वाला है ऐसा वैज्ञानिक भैया लोगन का संदेशा आगल
1: हाँ
0: है जो तपन अभी 2-4-10 दिन पड़े के है मन तनि बच बचा करके अपने भी मनई जोन लोग हम गैया गोरुन के भी देखा अभी लुआर का कुछ असर दोपहरिया के बाद
1: बा
0: अभी तापमान में उतना गिरावट नहीं मानसून भी आई अपने समय से ओहू का आनंद लेवल जाई लेकिन जो तपन पड़त बा एहू के जो
1: ऐसे तनी बचल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल तहीं से बच बचाव कर अब जरूरी है। जखन देखन तर तरकारी भी निकलत है वो बर बाजारे अपन समय समय से पहुंचावत रहे ताकि जो बाजार भाव है
1: हाँ
0: उनके समय से मिलत रहे।
1: बिल्कुल भैया, तो आओ अब चलल जा और भैया से आज्ञा लिया जाए।
0: तो वही उम्मीद के साथ भैया कि सब पढ़ें सब बढ़ें लड़ा मत लड़ावा मत अब भैया देश के आगे बढ़ावा तो पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:01 और 2 सेकंड हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म साजन से, आवाज अलका याग्निक की। गीतकार समीर और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म राजा से, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार नूर तारा खातून पुत्री मुर्तजा मुर्तजा शाह, जो ग्राम मंगरौर थाना चकिया जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, ये दिनांक 10 मई सन 2026 से लगभग दिन के 1 बजे से लापता हैं। नूर तारा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 16 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, आँख व बाल काले, लंबाई लगभग 5 फीट, सामान्य कदकाठी की है। लापता होने के समय गुलाबी रंग का सूट व सलवार पहनी थी। नूर तारा के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें।

सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मिथिलेश पांडे पुत्र वाल्मीकि पांडे जो ग्राम बेचुआ ग्राम बुचैया थाना सिधवलिया जिला गोपालगंज बिहार के निवासी हैं। ये दिनांक 20 मार्च सन 2026 को सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से कहीं लापता हैं। मिथिलेश पांडे के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 40 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच, ये हिंदी और भोजपुरी भाषाएं जानते हैं। लापता होने के समय सफ़ेद शर्ट और नीला पैंट पहने थे। ये मानसिक रूप से विकृत हैं। मिथिलेश पांडे के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त इस सूचना के अनुसार काजल पत्नी विनोद यादव जो जीवनाथपुर पोस्ट भरछा थाना अलीनगर जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, ये दिनांक 1 अप्रैल सन 2026 को सुबह 9 बजे से कहीं लापता हैं। काजल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 26 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई लगभग 5 फुट, चेहरा गोल, इकहरा बदन है। ये लापता होने के समय हरे रंग की साड़ी व पैर में चप्पल पहनी थी। काजल के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद

चंदौली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 7:20 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित से उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 350

0: 55 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभा

0: सामने रखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
3: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
1: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
6: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
6: चलो,
5: कहाँ
6: एडमिशन कराने?
7: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: मीडियम वेव 401.6।
10: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
11: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। वाचन स्वर आशुतोष और सना सलीम, प्रस्तुति अशोक पांडे।

0: ऐसे ही इतिहास की बातें करेंगे जो अपने आप में नायाब है, शानदार है, जिसने बिताए 90 साल हैं और ये 90 साल बेमिसाल हैं। इस विशेष कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ मैं, आपका रेडियो मित्र आशुतोष, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं
1: आप ही का साया सना सलीम। नमस्कार दोस्तों, हवा की लहरों पर तैर कर जो हर घर तक आती है वो आकाशवाणी ही है जो अपने पन का एहसास दिलाती है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज है जिसने संचार के आधुनिक युग का उद्घाटन किया। साल 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा की गई ये पहल उस समय की तकनीकी सीमाओं के भीतर एक क्रांतिकारी कदम था। ये प्रसारण सीमित दूरी तक ही संभव था और मुख्यतः शौकिया रेडियो प्रेमियों के प्रयास से संभव हो पाया था। ये वो समय था जब रेडियो केवल एक विलासिता की वस्तु समझा जाता था, लेकिन जल्द ही ये भारत के जनमानस से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया।
0: 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना भारत में रेडियो के औपचारिक व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत थी। बॉम्बे और कलकत्ता में स्थापित रेडियो स्टेशन समाचार, संगीत, नाटक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते थे। यद्यपि ये कंपनी 1930 में वित्तीय संकटों के चलते बंद हो गई, लेकिन इसने भारत में रेडियो की लोकप्रियता और संभावनाओं को सिद्ध कर दिया था। इसी संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की, जो आगे चलकर 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो बना। लॉयनल फील्डन को भारत का पहला कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नियुक्त किया गया, जिनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता ने ऑल इंडिया रेडियो को एक सुदृढ़ संगठन के रूप में स्थापित किया।
1: आकाशवाणी शब्द की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति और पौराणिक धारणाओं में गहराई से निहित है। संस्कृत में आकाशवाणी का शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी या ईश्वरीय संदेश। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में आकाशवाणी के माध्यम से दिव्य घोषणाएं होती हैं, जिन्हें सभी पात्र सुन सकते हैं। जब रेडियो के माध्यम से जनता तक ध्वनि संदेश बिना किसी दृश्य के प्रसारित होने लगे तो ये नाम स्वाभाविक रूप से उपयुक्त प्रतीत हुआ। ये शब्द न केवल तकनीकी व्याख्या में फिट बैठा बल्कि इसने भारतीय जनमानस के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित किया।
0: वर्ष 1935 में मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर MV गोपालस्वामी ने अपने निजी निवास विट्ठल विहार में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिसे उन्होंने आकाशवाणी नाम दिया। ये भारत में निजी स्तर पर रेडियो प्रसारण की एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसने न केवल शैक्षणिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति की बल्कि आकाशवाणी शब्द को रेडियो प्रसारण की पहचान बना दिया। उनके इस प्रयास ने दक्षिण भारत में रेडियो के प्रसार को बल दिया और सरकार को व्यापक स्तर पर रेडियो की सेवा की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया।
1: वर्ष 1939 में कलकत्ता में शॉर्ट वेव सेवा की शुरुआत के अवसर पर पंडित रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक ऐसे विशेष कविता की रचना की जिसमें आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने रेडियो को ईश्वरीय ध्वनि बताया जो पूरे राष्ट्र में समान रूप से गूंजती है। उनका ये काव्य संदेश केवल एक साहित्यिक रचना नहीं था बल्कि उस समय के सांस्कृतिक और तकनीकी मिलन का प्रतीक बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर के इस प्रयोग के बाद आकाशवाणी शब्द को रेडियो के लिए देश भर में लोकप्रियता मिलने लगी और इसे एक प्रतिष्ठित पहचान मिली।
0: वर्ष 1956 में पंडित नरेंद्र शर्मा, जो एक महान कवि और गीतकार थे, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी नाम का सुझाव दिया। उनका मानना था कि ये नाम भारतीय परंपरा, संस्कृति और भाषा के साथ पूर्णतः मेल खाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस सुझाव को मान्यता देते हुए आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक हिंदी नाम घोषित किया। ये निर्णय न केवल भाषाई दृष्टि से महत्वपूर्ण था बल्कि ये रेडियो को एक भारतीय पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके साथ ही रेडियो

वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने विविध भारती सेवा का शुभारंभ किया, जिसने रेडियो प्रसारण को आम जनमानस के और निकट ला दिया। फिल्मों के लोकप्रिय गीत, नाट्य कार्यक्रम, हास्य, भक्ति और ज्ञानवर्धक वार्ताओं ने विविध भारती को विशेष बना दिया। उद्घाटन अवसर पर प्रसारित गीत नाच रे मयूरा और उद्घोषणा, ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है, इसने श्रोताओं पर गहरी छाप छोड़ी। विविध भारती ने रेडियो को मनोरंजन का सबसे सुलभ और जनप्रिय माध्यम बना दिया और भारत के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना डाली।

0: वर्ष 1990 में प्रसार भारती अधिनियम पारित हुआ, जिसने आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारण संस्था के रूप में मान्यता दी। ये अधिनियम 15 नवंबर 1997 को लागू हुआ। आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करने का कार्य शुरू किया। श्रोताओं, आकाशवाणी ने समय समय पर भारत में बहुत बड़े परिवर्तनों को भी जन्म दिया और उनका कारक बनी। भारत में खाद्य सुरक्षा और कृषि जगत कार्यक्रम के महत्व पर चर्चा करते हुए आप हैं सुविख्यात नाट्य निर्देशक और आकाशवाणी वाराणसी के पूर्व सहायक केंद्र निदेशक श्री नरेंद्र आचार्य।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर पूरे देश में आकाशवाणी से कई कई तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है और पहले एक छोटा सा जो पौधा था, अब ये पूरा वटवृक्ष बन गया है। देश के तकरीबन 98% जहाँ तक मुझे याद आ रहा है भाग पर आकाशवाणी की पहुँच है। देश की जितनी भाषाएं हैं और ग्रामीण कार्यक्रम में जितनी बोलियां हैं, उन सब में आकाशवाणी की पहुंच है। आकाशवाणी की 90 वर्षों में बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। पहली जो है वो है हरित क्रांति। हम सबको याद है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हम लोग के घर में पीएल 180 अमेरिकी गेहूँ आता था, एकदम लाल रंग का, बिल्कुल बेकार, और क्योंकि उस समय उतना उत्पादन था नहीं खाद्यान्न का। इसको देख करके फिर आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम चलाए गए कृषि दर्शन सुबह और शाम। उन कार्यक्रमों की वजह से हरित क्रांति देश में आई। सुबह 10 मिनट का कार्यक्रम होता था, वो बिल्कुल पूर्व कार्यक्रम होता, उसमें सीधे सीधे खेती बाड़ी की बात होती, और शाम को कार्यक्रम होता था। सुबह जो कार्यक्रम है उसका समय ऐसा रखा गया है कि जब किसान खेत में जाता है उसके पहले, और शाम का समय इसका ऐसा रखा गया है कि जो चौपाल, सारे किसान चौपाल में इकट्ठा होते हैं, हम चौपाल में बैठते हैं और वहाँ वो ट्रांजिस्टर लगा करके उसको सुनते हैं। एक तो उसके एंकर होते हैं जो उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जैसे बनारस में हमारे हरि भैया थे, पंडित हरिराम द्विवेदी। तो इस तरह से कार्यक्रम की आयोजन की गई कि ये कार्यक्रम बहुत अधिक पॉपुलर हुआ, बहुत अधिक जाना, किसानों को बहुत ज्ञान बढ़ा, और इस कार्यक्रम की बदौलत ही इस देश में हरित क्रांति आई। ये आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है इसका शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत और पूरे संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिनको हिंदी सीखना हो, भाषा सीखनी हो, उनको ये कहा जाता है कि आप हिंदी के समाचार सुनिए, आपको अपने आप हिंदी भाषा का संस्कार हो जाएगा। इस तरह से आकाशवाणी की बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, और मैं चाहूँगा कि आकाशवाणी और इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। धन्यवाद।
0: बनारस 28 अक्टूबर 1962 को आकाशवाणी वाराणसी की शुरुआत हुई और वर्ष 1984 में

0: हमारे इस महमूरगंज स्थित रेडियो स्टेशन से प्रसारण आरंभ हुआ। उस वक्त एक कार्यक्रम जो कि साप्ताहिक समाचारों का कार्यक्रम था परिक्रमा, बेहद लोकप्रिय हुआ था। तो आइए परिक्रमा के लोकप्रिय प्रस्तोता और आकाशवाणी वाराणसी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री शिवमूरत सिंह से सुनते हैं उनकी यादों को।
1: इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिवमूरत सिंह यानी मूरत भैया का राम राम। आकाशवाणी वाराणसी की शुरुआत तो 28 अक्टूबर 1962 को हुई। हमने 30 अप्रैल 1964 को आकाशवाणी ज्वाइन किया। 1972 में कृषि जगत कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। उन दिनों गंगा भैया, हरि भैया, शिवबालक भैया और लोग थे, उन्हीं के साथ हम भी कंपेयरिंग करते थे कृषि जगत में। 1975 में ऑफिस महमूरगंज आ गया, लेकिन प्रसारण वही सारनाथ से ही चल रहा था, स्टूडियो वही था। 1984 से यहाँ महमूरगंज स्टूडियो से प्रसारण शुरू हो गया और यहीं से प्रसारण होने लगा। परिक्रमा ऐसा कार्यक्रम था जो हफ्ते में एक दिन ही 15 मिनट के लिए प्रसारित होता था, लेकिन उसके श्रोता बहुत थे। हम ज्यादा कुछ न कह करके ये कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी जाते होंगे, अगर लोगों को ये पता चलता होगा कि ये आकाशवाणी में रहते हैं तो एक विशेष निगाह से आपको देखते होंगे। आकाशवाणी के कार्यक्रम के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सना
2: जी, आशुतोष,
0: 90 वर्षों का यह जो सफर था, ये बहुत सारे पड़ावों से होते हुए यहाँ तक आया है, और ये पड़ाव ऐसे थे जिन्होंने एक मील का पत्थर कायम किया।
2: बिल्कुल।
0: तो हम अपने श्रोताओं को कुछ ऐसे पड़ावों के बारे में, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पर दे दें जिनको पार करते हुए आज आकाशवाणी इस मुकाम पर पहुँची है। तो बताइए, क्या बता रही हैं आप?
2: देखिए, साल 1936 में भारत में रेडियो ने एक नई भूमिका निभानी शुरू की, जब पहली बार श्रोताओं तक समाचार पहुंचने लगे। 19 जनवरी 1936 को दिल्ली केंद्र से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया। ये प्रसारण इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अंतर्गत शुरू हुआ, जिसने भारत में रेडियो समाचार सेवा की नींव रखी।
0: 16 दिसंबर 1941 को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सुरीली आवाज देश के श्रोताओं तक पहुंची। इस पहली रेडियो प्रस्तुति में उन्होंने दो मराठी नाट्य गीत पेश किए जो उनके ऐतिहासिक संगीत सफर की आधारशिला बनी। उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रम जयमाला का संचालन भी किया था। आकाशवाणी के साथ उनका यह जुड़ाव आज भी एक स्वर्णिम स्मृति के रूप में याद किया जाता है।

0: 14-15 अगस्त साल 1947 जब आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर स्वतंत्र भारत का पहला स्वर गूंजा। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का कालजयी भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी और राजेंद्र प्रसाद का संबोधन सीधा रेडियो पर प्रसारित किया गया। 12 नवंबर 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था। आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो ने उस स्टूडियो का नाम बापू स्टूडियो रखा। इस ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 12 नवंबर को देश भर में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: सना जी, इसी क्रम में हम अपने कुछ और जो विशिष्ट व्यक्ति आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका संदेश भी सुनते चलते हैं। और इसी क्रम में आकाशवाणी वाराणसी की स्थापना और कार्यक्रम प्रसारण के आरंभिक दिनों की यादों के साथ हैं आप सबकी चहेती पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका आकाशवाणी वाराणसी वीणा कालिया जी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैंने आकाशवाणी वाराणसी 1971 में ज्वाइन किया था सारनाथ में। सारनाथ ट्रांसमीटर में वहीं

0: का भी प्रसारण होता था, तो उस समय ज्यादातर कार्यक्रम इलाहाबाद से रिले होते थे। बाद में वहाँ पे एक इंद्रधनुष करके कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी रितु का शुरू हुआ और पत्र के लिए धन्यवाद। तो पत्र के लिए धन्यवाद में मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं श्री पंचदेव पांडे जी के साथ करती थी। उसके बाद 1984 में हम लोग शिफ्ट हो गए महमूरगंज वाराणसी में, तो वहाँ सारे स्टूडियो थे, तो वहाँ से फिर काफी प्रोग्राम ओरिजिनेट होने लगे। कुछ प्रोग्राम लाइव होते थे, जैसे बहनों के कार्यक्रम है या ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम हो, बालसम कार्यक्रम था, नन्ही दुनिया कार्यक्रम जो छोटे बच्चों का था उसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, पत्र के लिए धन्यवाद था, वार्ताएं थी और डिस्कशंस थे, नाटक थे और क्लासिकल म्यूजिक के भी रिकॉर्डिंग होते थे। तो श्रोताओं के बीच में रहते हुए बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और खास करके फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यानी हेलो पुणे फरमाइश, ये आप सभी सुधी श्रोताओं का सहयोग है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है कि आकाशवाणी ने अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस सबके लिए आप सभी श्रोताओं का, सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, 20 जुलाई 1952 को ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यानी राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करना और उसे आम जनमानस तक पहुंचाना था।
2: रेडियो के स्वर्णिम दौर में खेल के हर बड़े मुकाबले की कमेंट्री सुनने के लिए लाखों लोग आकाशवाणी से जुड़े रहते थे। मार्च 1975 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता, तो इस ऐतिहासिक पल का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से ही किया गया। मशहूर कमेंटेटर जसदेव सिंह ने अपनी जोशीली हिंदी उर्दू मिश्रित कमेंट्री के जरिए इस मुकाबले को करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाया और इसे जीवंत बना दिया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय रेडियो प्रसारण ने 1977 में एक नए युग में प्रवेश किया जिसने रेडियो सुनने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 जुलाई 1977 को मद्रास से भारत में पहली बार FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेवा का शुभारंभ हुआ। आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई ये सेवा पारंपरिक AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रसारण के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट और शोर रहित ध्वनि अनुभव प्रदान करने वाली थी।
1: वर्ष 1952 में रेडियो सीलोन से शुरू हुआ एक सफर जिसका नाम था बिना का गीतमाला, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हिंदी फिल्म संगीत को घर घर तक पहुंचाया और रेडियो की दुनिया में धूम मचा दी। प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी की जादुई आवाज और अंदाज ने इसे श्रोताओं के दिलों में खास जगह दिलाई। उनका मशहूर अंदाज,
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ,
1: आज भी लोग बड़े प्यार से याद करते हैं।
2: निरंतर विस्तार और विकास की इस यात्रा में 1990 के दशक तक आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 2 मार्च 1990 को आकाशवाणी ने अपनी सफलता का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया जब आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका 100वां स्टेशन स्थापित किया गया।
1: 27 फरवरी 2002 को आकाशवाणी ने अपनी पहली डायरेक्ट टू होम यानी DTH डिजिटल सैटेलाइट सेवा शुरू करके एक नई तकनीकी क्रांति का आगाज किया। वर्ष 2013 में प्रसार भारती ने न्यूज ऑन AIR ऐप लॉन्च किया। इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचे।
2: 13 अक्टूबर 2014 को रेडियो के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। विजयदशमी के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार देश की जनता को संबोधित किया।
1: 26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को समर्पित करते हुए संगीत प्रेमियों के लिए रागम चैनल की शुरुआत की।
2: सितंबर 2021 में आकाशवाणी ने लद्दाख के कारगिल स्थित हम्बोटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन की स्थापना की। लगभग 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित

0: यह स्टेशन एक तकनीकी उपलब्धि और सीमावर्ती क्षेत्रों तक संवाद और सूचना पहुंचाने की एक सशक्त पहल रही।
1: और श्रोताओं, नवंबर 2024 में गोवा के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की पुरानी विरासत को आज की डिजिटल पीढ़ी से जोड़ने का एक मजबूत सेतु वेव्स नामक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: श्रोताओं, वर्तमान में आकाशवाणी 591 प्रसारण केंद्रों के माध्यम से भारत के कोने कोने में सुनी जा रही है। ये 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करती है, जिससे ये भारत के विविधतापूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसकी बाह्य सेवा प्रभाग 27 भाषाओं में प्रसारण करता है, जिसमें 16 विदेशी और 11 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। ये सेवा न केवल प्रवासी भारतीयों को भारत से जुड़े रखती है, बल्कि भारत की संस्कृति और विचारधारा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत भी करती है। और अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम प्रमुख और सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अशोक पांडे। तो आइए उनका शुभकामना संदेश सुन लेते हैं।
4: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज का दिन इस मायने में भी विशेष है कि आकाशवाणी अपनी गौरवपूर्ण यात्रा के 90 वर्ष पूरी कर रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रोताओं, 90 वर्षों की यह यात्रा केवल एक प्रसारण संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों श्रोताओं के साथ बने हुए विश्वास, अपनत्व और संवाद की भी यात्रा है। आप सुनते रहे, सुझाव देते रहे और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देते रहे, इसी कारण आकाशवाणी आज भी देश का सबसे विश्वसनीय और आत्मीय प्रसारण माध्यम बनी हुई है। आकाशवाणी के 9 दशकों की इस अभूतपूर्व यात्रा के इस उत्सव में हम आपके साथ अपने इस विशेष संबंध का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हम आपकी अपेक्षाओं पर इसी तरह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
0: और शुभकामना संदेश के इस क्रम में आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री स्वतंत्र सिंह।
5: प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने अपने देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी से एक विशेष रिश्ता बनाया है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि आपने हमें अपना विश्वास, स्नेह और सहयोग दिया। आपके इसी प्यार ने आकाशवाणी को देश का सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यम बनाया है। आकाशवाणी अपने मूल उद्देश्य जनसेवा, विश्वसनीय जानकारी और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। आइए हम सब मिलकर आकाशवाणी की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाले वर्षों को भी उतना ही यादगार बनाएं। आपके स्नेह और विश्वास के लिए आप सभी को पुनः बधाई, धन्यवाद।
0: आशुतोष जी।
6: हाँ सना जी।
0: आकाशवाणी ने न केवल सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया, बल्कि ये भारत के इतिहास और समाज का जीवंत दस्तावेज बन गया। भारत की आज़ादी, पंचवर्षीय योजनाएं, चुनावों, युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, हर युग हर बदलाव की आवाज बनकर आकाशवाणी देशवासियों तक पहुंची है।
1: ये बात तो है सना, आकाशवाणी भारत के संचार इतिहास की एक गौरवशाली गाथा है, जो समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये संस्था आने वाले समय में भी देश की आवाज बनी रहेगी और भारत की

0: विविधता, एकता और चेतना को अपनी सुरीली वाणी में समेटे हुए आगे बढ़ती रहेगी।
1: दोस्तों, राबता लाख सही काफिला सालार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ।
2: मैं समझ गया सना जी, आप क्या कहना चाह रही हैं। वक्त बीतते हुए समय नहीं लगता, 90 वर्षों का ये सफर बीत गया और अभी सोचे तो लगता है कल की ही बात है। और इसी तरह से हमारे कार्यक्रम का समय भी बीत रहा है और लग रहा है कि अभी और कुछ समय होता तो बहुत सारी बातें की जाती। लेकिन अब इसी के साथ एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के पूर्ण होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: और आशुतोष जी,
2: जी
1: अपने श्रोताओं से हम ये भी कहेंगे कि आज का ये विशेष कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा, 90 साल बेमिसाल। अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे जरूर साझा करें हमारी ईमेल आईडी पर pkldaarvaranasi@gmail.com पर, और हमारे फेसबुक पेज पर भी ये कार्यक्रम बाद में अपलोड होगा तो वहाँ भी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। और अब इसी के साथ आप ही का साया सना सलीम
2: और आपके रेडियो मित्र आशुतोष को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। वाचन स्वर आशुतोष और सना सलीम, प्रस्तुति थी अशोक पांडे की।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:07 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं चित्रा सिंह।

0: to catalyze, you know, the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting of this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा आपके पास आते हैं जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी फिगर्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है उसमें इन्फ्लेशन कितना है उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने 8 साल हो गया सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है फार्मर को बेटर प्राइस मिला है उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और मस्टर्ड का देख लीजिए अभी मस्टर्ड का सीजन है एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रूपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को.
2: बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है काफी अच्छी बढ़ोतरी क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो. और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है. इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है. एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है. फार्मर ने प्रोटेस्ट किया नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया. जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो.
1: मिस्टर विनोद आनंद कमिंग टू यू आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं उस पर बातचीत होती है तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे.
3: जी देखिए 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में. अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए. तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च

0: हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रूपये जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रूपये हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
0: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं होकर के स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से न सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है,

0: तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको इस। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है, पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से गए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल।
2: देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा। ये
1: तो पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
2: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। कि आप

0: एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहां की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वही डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फास्ट फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी जरूरत
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में X/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन,

0: डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
0: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओज को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं सब्सिडाइज में चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
0: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट, हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 इयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
0: सी, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range, right. And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent, okay, so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.

0: Thank you very much.
1: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है. कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत. भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा. भारत ने इजराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा. और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. एक रिपोर्ट.
5: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए. छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया. लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था. भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
4: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है. ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है. योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है.
6: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली. 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम.

0: राम बना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः

0: स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस R&D एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
2: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने

0: जिसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
1: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस अहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस अहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जम्हूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।

0: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50-50 हजार रुपये की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल निफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है, जो जंगलात और माहौलियाती निजाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वादे किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि

0: लिए सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मंसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़राअत से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर्स है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और DMK ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: भारत ने मगरबी एशिया में ताज़ा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये ताज़ा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा तश्वीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खत्े में अमन इस्तेकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिज़ाइल हमले किए हैं जिसे मगरबी एशिया में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने भी ताज़ा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारतीय सफारतखाने ने यह सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफर के दस्तियाब वसाइल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनअती पार्कों की तरक्की में तेजी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का आगाज किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनअती इको निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज्म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनअती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और

0: पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अदा किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 और 21 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में पहला गीत है जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: इसी गीत के संग कार्यक्रम अंजुमन यहीं समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम अंजुमन में आज के कलाकार थे जगजीत सिंह, कुमार सानू, बाबुल सुप्रियो, अल्ताफ रजा और सोनू निगम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं मधुलिका राय, डॉक्टर अबरार हसन सिद्दीकी, तरुण कुमार और यूनुस अंसारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, वाराणसी की अति प्राचीनतम शिक्षण संस्थान उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
2: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? आइए जुड़िए उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी से, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। यहां से निकले छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की मिसाल हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
3: आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में कवि गोष्ठी है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अबरार हसन सिद्दीकी साहब, यूनुस अंसारी सोज जमानवी जी, मधुलिका राय जी और स्वयं संचालन करता मैं तरुण कुमार। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अबरार हसन सिद्दीकी साहब को इस शेर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी कविताओं को पढ़ें। कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
4: मैं सबसे पहले आकाशवाणी वाराणसी का शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और अपनी रचना एक मतले से शुरू करता हूँ कि याना को रख दिया गिरवी, खुशामद आखरी कर ली, मोहब्बत में तो हमने दुश्मनों की भी चाकरी कर ली।
5: क्या बात है।
4: और एक कथा यूं हाजिर कर रहा हूँ कि रूठते और मनाते हुए मर जाते हैं, रूठते और मनाते हुए मर जाते हैं, उम्र भर नाज उठाते हुए मर जाते हैं। जिंदगी तुझसे मोहब्बत भी अजब है अपनी, हम तेरा साथ निभाते हुए मर जाते हैं। और आइए गजल के कुछ शेर पेश करता हूँ कि मतलब यूं के कपड़ों की तरह जिस्म भी एक दिन मसक गया,
6: वाह वाह वाह,
4: कपड़ों की तरह जिस्म भी एक दिन मसक गया, चलता भी कितना आदमी आखिर के थक गया, चलता भी कितना आदमी आखिर के थक गया। और कल उसको देखकर बड़ी तबीयत उदास हुई, कल उसको देखकर बड़ी तबीयत उदास हुई, आंखों से नूर चेहरे से सारा नमक गया, आंखों से नूर चेहरे से सारा नमक गया। और फिर सारी रात फिक्र के पहलू में कट गई, फिर सारी रात फिक्र के पहलू में कट गई, कच्चा मकान गरीब का जिस शब टपक गया, कच्चा मकान गरीब का जिस शब टपक गया। और पूछा गले लगा के जो फुरकत का मामला,
6: पूछा गले लगा के जो फुरकत का मामला,
4: सब कोशिशों के बाद भी आंसू टपक गया, सब कोशिशों के बाद भी आंसू टपक गया। और मंजिल की जुस्तुजू है तो एक रहनुमा भी चुन, मंजिल की जुस्तुजू है तो एक रहनुमा भी चुन, तन्हा जो चल पड़ा है वो अक्सर भटक गया, तन्हा जो चल पड़ा है वो अक्सर भटक गया। और एक बार देखा था किसी गफलत शियार को, एक बार देखा था किसी गफलत शियार को, बस क्या कहें कि उर्फी वही दिल अटक गया, बस क्या कहें कि उर्फी वही दिल अटक गया। और एक दूसरी गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि मतलब यूं कि किसी की आर्ज़ू

0: आरजू हद से गुजर जाने को कहती है, किसी की आरजू हद से गुजर जाने को कहती है, मोहब्बत भी अजब शय है कि मर जाने को कहती है, मोहब्बत भी अजब शय है कि मर जाने को कहती है, और जवानी में भी याद आते नहीं माँ बाप बेटे को, जवानी में भी याद आते नहीं माँ बाप बेटे को, ज़ईफ़ी में भी बेटी माँ के घर जाने को कहती है, ज़ईफ़ी में भी बेटी माँ के घर जाने को कहती है, और ये ढलती उम्र का आलम भी मत पूछो के कैसा है, ये ढलती उम्र का आलम भी मत पूछो के कैसा है, जरा सी ठेस लगते आंख भर जाने को कहती है, जरा सी ठेस लगते आंख भर जाने को कहती है, और शेर कहा है कि समंदर कैद होना चाहता है एक कूजे में, समंदर कैद होना चाहता है एक कूजे में, नदी लेकिन समंदर में उतर जाने को कहती है, नदी लेकिन समंदर में उतर जाने को कहती है, यूं कहा कि ये कैसी बेहिसी कैसा सितम सयाद है तेरा, ये कैसी बेहिसी कैसा सितम सयाद है तेरा, रिहा चिड़िया को कर दे वो अगर जाने को कहती है, रिहा चिड़िया को कर दे वो अगर जाने को कहती है, और शेर कुछ यूं अर्ज किया है कि तूने क्या देखा नहीं एक इशारा करके, तूने क्या देखा नहीं एक इशारा करके, फेंक दी दुनिया तेरे सर से उतारा करके, तूने क्या देखा नहीं एक इशारा करके, फेंक दी दुनिया तेरे सर से उतारा करके, और एक फकत जिक्र मेरी जान तुम्हारा करके, एक फकत जिक्र मेरी जान तुम्हारा करके, दिल के बाजार में बैठा हूँ खसारा करके, दिल के बाजार में बैठा हूँ खसारा करके, और जिंदगी आई है मुश्किल से अभी रस्ते पर, जिंदगी आई है मुश्किल से अभी रस्ते पर, कौन उलझेगा मियां इश्क दोबारा करके, कौन उलझेगा मियां इश्क दोबारा करके, शेर देखे सो साहब के, नाउमीदी ही मेरे हिस्से में आई अब तक, नाउमीदी ही मेरे हिस्से में आई अब तक, दिल को देखा है कई बार तुम्हारा करके, दिल को देखा है कई बार तुम्हारा करके, और शेर देखें कि मैं सरे बज़्म सरे राह भी बदनाम हुआ, मैं सरे बज़्म सरे राह भी बदनाम हुआ, तेरे खामोश इशारों को गवारा करके, तेरे खामोश इशारों को गवारा करके, और शेर देखें कि मैं अभी सोच रहा था कि वफा मुश्किल है, मैं अभी सोच रहा था कि वफा मुश्किल है, और वो चल दिए खुद मुझसे किनारा करके, और वो चल दिए खुद मुझसे किनारा करके, और शेर देखें कि हल मसाइल का किसी तौर तो निकले उर्फी, हल मसाइल का किसी तौर तो निकले उर्फी, मशवरा देख लें एक बार दोबारा करके, मशवरा देख लें एक बार दोबारा करके, फेंक दी दुनिया तेरे सर से उतारा कर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब सिद्दीकी साहब, बहुत खूब। अब मैं यूनुस अंसारी सोज जमानवी जी को इस शेर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी रचनाओं को पढ़े, कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता।
2: मतला समाप्त हमारी
0: इर्शाद
2: के

0: वाह
1: क्या बात
0: वाह
1: है,
0: वाह वाह
1: क्या
0: वाह।
1: बात।
0: देखते रह गए बगल के लोग, हुस्न मतलब समा समा के
1: इरशाद इरशाद।
0: आज।

0: लोग घर से आते
1: निकल
0: नहीं,
1: के रोज।
0: निकल
1: वाह वाह
0: के
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: कहने
1: क्या
0: क्या
1: बात है, वाह वाह।
0: घर से आते नहीं, निकल के लो। शेर समात हमारे के
1: शाबाश।
0: खूब।

0: आ गए चांद तक
1: टहल के
0: टहल
1: लो।
0: के
1: क्या बात है, क्या बात,
0: लो,
1: वाह
0: आ
1: वाह वाह,
0: गए चांद तक
1: टहल के लो।
0: टहल के लो। और मक्ता समाप्त फरमाया
1: इर्शाद
0: के
1: इर्शाद।
0: सोज आहें भी हो गई नाकाम
1: सोजा है।
0: सो।

0: गुनगुनाएंगे तेरी खामोशी भी तो सौगात होगी, तेरी खामोशी भी तो सौगात होगी। मेरे दिल की दुनिया में तू फिर से आए, मेरे दिल की दुनिया में तू फिर से आए, हवाओं में फिर तेरी बारात होगी,
1: वाह वाह
0: हवाओं
1: वाह
0: में फिर तेरी
1: वाह,
0: बारात
1: बात
0: होगी।
1: होगी
0: न थी कोई आवाज न कहकशा थी,
1: न
0: न
1: थी
0: थी
1: कोई
0: कोई
1: आवाज
0: आवाज
1: न
0: न
1: कहकशा।
0: कहकशा थी, तेरी याद ही मेरी हर बात होगी, तेरी याद ही मेरी हर बात
1: बात
0: होगी।
1: होगी
0: जो अशकों में डूबे हैं ख्वाबों के दरिया, जो अशकों में डूबे हैं
1: ख्वाबों के दरिया।
0: ख्वाबों के दरिया, किसी रोज उनमें भी बरसात होगी,
1: वाह
0: किसी रोज
1: उनमें भी
0: उनमें भी बरसात
1: बरसात।
0: होगी। और
1: वाह
0: मक्ते का शेर है, मधु तेरे लहजे में एक नर्म लम्हा, मधु तेरे लहजे में एक नर्म लम्हा, उसी मोड़ पर फिर मुलाकात
1: मुलाकात होगी।
0: होगी,
1: वाह उसी
0: उसी
1: मोड़
0: मोड़ पर फिर
1: मुलाकात।
0: मुलाकात होगी। और एक गजल मैं पेश करती हूँ तरन्नुम में, सुनिएगा।
1: जी इरशाद इरशाद।

0: बहुत खूब सो साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: वाह वाह वाह।
0: अब मैं वाराणसी की सुप्रसिद्ध शायरा मधुलिका राय जी को इस शेर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि मुस्कुरा दे तो बहारें भी हया करती हैं, वो तो औरत है कांटों पर भी जिया करती है, वो तो औरत है कांटों पर भी जिया करती है।
2: शुक्रिया तरुण जी, और मैं अपनी कुछ लाइनें पेश करती हूँ, सुनिएगा। नजर की नजाकत से जब बात होगी, नजर की नजाकत से जब बात होगी, उसी पल शुरू वो मुलाकात होगी। सफर उलझनों का जहां खत्म होगा, सफर उलझनों का जहां खत्म होगा, वहीं से नई एक शुरुआत होगी, वहीं से नई एक शुरुआत होगी। कभी चुप रहेंगे, कभी चुप रहेंगे, कभी गुनगुनाएं, कभी चुप रहेंगे, कभी

0: वाह जी
1: और मेरा पसंदीदा शेर है,
0: वाह।
1: आप उनको कहूं तो झिझक सी लगे, आप उनको कहूं तो झिझक सी लगे।

0: बात है। और मैं बहुत ही अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ तरुण कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ इस शेर के साथ। मिले हैं आज तो फिर मिलने का वादा करना, मिले हैं आज फिर तो मिलने का वादा करना, यादों के इस सफर को और भी ज्यादा करना।
1: जरूर जरूर मधुलिका मैम। तो मेरी कविता है, जो पहली कविता है, मैं हवा के विपरीत बहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो जमाना है, मैं उस जैसा नहीं हूँ, कुछ अलग। तो पढ़ता हूँ, मैं दुखों के अंगड़ित झंझावात सहता हूँ,
2: मैं दुखों के
1: मैं दुखों के अंगड़ित झंझावात सहता हूँ, फिर भी मैं हवा के विपरीत बहता हूँ, फिर भी मैं हवा के विपरीत बहता हूँ।
0: बहुत है।
1: रिश्ते नाते प्यार वफा, रिश्ते नाते प्यार वफा, इसकी न कभी परवाह किसी को, आजकल तो नित नए टूटे हुए जज्बात सहता हूँ, फिर भी मैं हवा के विपरीत बहता हूँ। काल नयनों में है मेरे, काल नयनों में है मेरे, ब्याल अधरों पर है मेरे, मैं न किंचित परवाह करता हूँ, उसी पथ पर नित नए पग को बढ़ाता हूँ, मैं हवा के विपरीत बहता हूँ। थक गए हैं पग जो मेरे, थक गए हैं पग जो मेरे, उसकी नहीं परवाह किंचित, चलता हूं मैं उसी गत से, ना तनिक विश्राम करता हूं, क्योंकि मैं हवा के
2: विपरीत
1: विपरीत बहता
2: चलता
1: हूं।
2: हूं।
1: तेज हवाओं के झोंकों संग, तेज हवाओं के झोंकों संग है हरित तृण अस्तित्व बचाते,
2: वाह,
1: मैं वह तरुण तर जो टूट जाता हूं, फिर भी मैं हवा के विपरीत
2: विपरीत चल,
1: बहता हूं।
2: वाह भाई वाह,
1: टूट कर भी 100 शाखाएं, टूट कर
2: कर भी
1: भी सौ
2: सौ
1: शाखाएं
2: शाखाएं।
1: होती हैं मेरे उरमें, चाहता हूं सब कुछ दे दूं, जो भी है मेरे कर में,
2: वाह वाह,
1: इस
2: मेरे
1: क्षणिक
2: कर्म।
1: जीवन सफर में, इस क्षणिक जीवन सफर में बस यही चाह रखता हूं, टूटने को फिर खड़ा मैं उनकी राह तकता हूं,
0: क्या बात
1: क्योंकि तो मैं हवा के
0: विपरीत
1: विपरीत
0: चलता
1: बहता हूं,
2: हूँ।
1: मैं
2: वाह
1: हवा
2: वाह
1: के
2: जी वाह,
1: विपरीत
2: विपरीत।
1: बहता
2: वाह वाह
1: हूं।
2: वाह,
1: दुख सुख के इस भंवर में मैं हूं फंसता जा रहा, दुख सुख के इस भंवर में मैं हूं फंसता जा रहा, काल की कठोर पास में मैं हूं कसता जा रहा, फिर भी इस शाश्वत सफर में दुख सुख का व्यापार करता हूं, फिर भी इस शाश्वत सफर में
2: दुख सुख
1: दुख
2: का
1: सुख का
2: व्यापार
1: व्यापार
2: करता
1: करता हूं, क्योंकि मैं हवा के विपरीत
2: विपरीत
1: बहता
2: चलता
1: हूं।
2: हूँ।
1: सख्त सारे हृदय जग के, सख्त सारे हृदय जग के, जान क्यों मुझ में नमी है, मैं भी हूं केवल आदमी, बस यही मेरी कमी है कि
2: वाह
1: आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं,
2: वाह वाह,
1: क्योंकि मैं हवा के विपरीत बहता हूं,
0: बहुत खूब,
1: मैं हवा
0: बहुत
1: के
0: खूब।
1: विपरीत बहता हूं। जो फंसे मझधार में है,
2: जो फंसे
1: जो
2: मझधार
1: फंसे मझधार में है, जिनको न माझी मिल रहा, जो फंसे मझधार में है जिनको न माझी मिल रहा, मैं उन्हीं का पतवार बन संग उनके नदी को पार करता हूं,
2: वाह,
1: क्योंकि मैं हवा के विपरीत बहता हूं। और जो मुझे सबसे सुंदर लगती है पंक्तियां, वो यह है, फूल जो सुंदर दिखते मुझको,
2: फूल जो
1: फूल जो
2: सुंदर
1: सुंदर
2: दिखते
1: दिखते
2: मुझको,
1: मुझको, होती इच्छा उसे न तोड़े, जो कुछ भी हो सुंदर जग में उसको किस विधि से जोड़े,
0: क्या बात
1: मन
2: है।
1: से प्रश्न यही 100 बार करता हूं, मन से प्रश्न
2: प्रश्न
1: यही
2: यही सौ
1: सौ
2: बार
1: बार
2: करता
1: करता
2: हूँ।
1: हूं, क्योंकि मैं हवा के विपरीत बहता हूं, मैं
2: वाह
1: हवा के विपरीत बहता हूं।
2: वाह,
1: और मेरी दूसरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है,
2: इरशाद
1: उसका
2: इरशाद।
1: शीर्षक है नवल संधान। मंजिलों से अपने मिलन की बात करते हैं, मंजिलों से अपने मिलन की बात करते हैं, राह अपनी हो कठिन या कि सरल, राह अपनी हो कठिन या कि सरल, हमने इनकी तनिक परवाह करते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं,
0: बहुत खूब,
1: चलो पुनः नवल संधान
2: संधान
1: करते
2: करते
1: हैं।
2: हैं।
1: अवरोध कितने भी मिले हमको डगर में,
2: अवरोध
1: अवरोध
2: कितने
1: कितने
2: भी
1: भी
2: मिले
1: मिले हमको डगर में, या फंसे हो हम प्रबल धारा भंवर में, उद्देश्य हेतु हवन हम अपने प्राण करते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं। कंटकों से पूर्ण हो अपनी डगर, कंटकों से पूर्ण हो अपनी डगर, नाव फंसी हो धारा भंवर, नाव अपनी फंसी हो धारा भंवर, आत्मबल से व्यर्थ हम व्यवधान करते हैं, आत्मबल से व्यर्थ हम व्यवधान
2: व्यवधान
1: करते
2: करते
1: हैं,
2: हैं,
1: चलो
2: चलो
1: पुनः
2: पुनः
1: नवल
2: नवल
1: संधान
2: संधान।
1: करते हैं।
2: वाह,
1: अश्रुओं के मध्य में चंचल अनल हो, अश्रुओं के

0: मध्य में चंचल अनल हो, आंधियों में स्थिर सदा संबल प्रबल हो, ज्येष्ठ की भीषण तपन, ज्येष्ठ की भीषण तपन मधुमास करते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं। और अंतिम चार पंक्तियां हैं, क्षणिक जीवन को एक उत्सव मानकर,
1: क्षणिक
0: जीवन को एक उत्सव मानकर, अनादि जीव का अनित्य देह जानकर, अनादि जीव का अनित्य देह जानकर, नवीन पथ का सदा संज्ञान रखते हैं, नवीन पथ का सदा संज्ञान रखते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं, चलो
1: पुनः नवल संधान
0: करते हैं। असफलता, असफलता सफलता का द्वार माना जाए, असफलता जो है वास्तव में सफलता का द्वार है, तो असफलता सफलता का द्वार भी, जैसे पतझड़ के बाद बसंत का आह्वान भी, हम ऐसा मानकर पुनः नई राह चलते हैं, हम ऐसा मानकर पुनः नई राह चलते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं, चलो पुनः नवल संधान करते हैं। मेरी अगली कविता प्रस्तुत है, जरा गौर फरमाइए, इसका शीर्षक है तजुर्बा जिंदगी का। तजुर्बा जिंदगी का अब तक यही रहा, जो भी मैंने चाहा वो अपना नहीं रहा, जो भी मैंने चाहा वो अपना नहीं रहा। पाबंदियों में मैंने गुजारी है जिंदगी, पाबंदियों में मैंने गुजारी है जिंदगी, मेरे दायरे का अब वो जमाना नहीं रहा, मेरे दायरे का अब वो जमाना नहीं रहा। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है जिंदगी का सफर, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है जिंदगी का सफर, मैं कहता हूँ उनमें चलने का हौसला नहीं रहा, मैं कहता हूँ उनमें चलने का हौसला नहीं रहा। जी लेते हैं सभी लोग जिंदगी यहाँ मगर, जी लेते हैं सभी लोग जिंदगी यहाँ मगर, जीता वही है जो यहाँ डरकर नहीं रहा, जीता वही है जो यहाँ डरकर नहीं रहा। लोग मिलते हैं अपनों से होली में जाकर घर, लोग मिलते हैं अपनों से होली में जाकर घर, मेरे घर में मेरी माँ का वो उबटन नहीं रहा, मेरे घर में मेरी माँ का
1: उबटन नहीं रहा।
2: क्या बात है, सच्चा से।
0: वो गांव की दुनिया वो मिट्टी के घर औंदे, मेरे गांव में मेरे कोई घर, मेरा कोई घर अब घर नहीं रहा, मेरे गांव में कोई घर अब कोई घर नहीं रहा।
1: वाह वाह, मरमरी कविता आपने पढ़ी, वाह वाह वाह।
0: अब इन कविताओं के साथ ही हम इसका समापन करना चाहेंगे, इस काव्य गोष्ठी का, जिसमें गाजीपुर से पधारे हुए डॉक्टर अबरार हसन सिद्दीकी साहब, यूनुस अंसारी सोज साहब, बनारस की शायरा मधुलिका राय और स्वयं मैं संचालनकर्ता तरुण कुमार। आज के इस कवि गोष्ठी का समापन मैं हिंदुस्तान के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र जी की इस शेर से करना चाहूंगा कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी, वाराणसी की अति प्राचीनतम शिक्षण संस्थान उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
4: क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? आइए जुड़िए उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी से, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, अनुभवी शिक्षक, उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान। यहां से निकले छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की मिसाल हैं। उदय प्रताप इंटर कॉलेज भोजूबीर वाराणसी।
5: अभी आप कार्यक्रम कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे मधुलिका राय, डॉक्टर अबरार हसन सिद्दीकी, तरुण कुमार और यूनुस अंसारी।
6: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkldaarvaranasi@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @aarvaranasi। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 और 12 सेकंड हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं निर्मल सैनी का गिटार पर बजाया राग बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रीकांत मिश्रा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप निर्मल सैनी का गिटार पर बजाया राग बागेश्वरी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत किए थे श्रीकांत मिश्रा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने